0: Dagsing shinayi tat panang shinti krimsa na zats nga zhi Akashvani le ne shun jik tayin tsnga to chu tsu gyat chaduk. Kasa ta Akashvani deli ne sngu la samachi prabhat yang tis tene morning news sa na zat.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज

0: तुर्मुल जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान एलएनजी विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
1: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूति, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष

0: गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: नैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NEFED के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में NEFED की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाड़ा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
5: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत

0: का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
1: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता। बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया। बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले 6ठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए SIT गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अधिकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Varma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says principle of nation first has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma Award during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends 4 officials in connection with Lucknow fire incident. 4 accused arrested. 4 ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirmed death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said the country's achievements of the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
4: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी दो तीन दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
3: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said, world leaders recognize India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. Highlighting the government's 12 years in office, the Prime Minister said initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of Khadi and support for local products succeeded because citizens embraced the spirit of nation building.
4: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय हर कदम हर प्रयास उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
3: Mr. Modi said, nearly 25 crore people had moved out of poverty in recent years, leading to the emergence of a large new middle class and boosting economic activity.
4: 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, न्यू मिडिल क्लास में आए हैं, तो इसका फायदा केवल उन परिवारों तक नहीं रहता, बल्कि मिडिल क्लास का भी इतना फायदा होता है, क्योंकि ये नया कंज्यूमर है, जो इकोनॉमी को ड्राइव करता है, उसे अल्टीमेटली मिडिल क्लास के लिए अवसर बनते हैं, यानी गरीबी कम होना केवल वेलफेयर का ही विषय नहीं है, यह अवसरों के विस्तार की गाथा है, नई एस्पिरेशन की प्रेरणा है।
3: प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल प्रेजेंट द पद्मा अवार्ड्स ड्यूरिंग द सेकंड सिविल इन्वेस्टिशर सेरेमनी एट राष्ट्रपति भवन दिस इवनिंग। Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. The President will confer 65 Padma Awards today. A report.
5: This year, the government has announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Among the awardees, 19 are women, while 16 individuals will be awarded posthumously. The Padma Awards, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, are amongst the highest civilian awards of the country. Tennis legend Vijay Amritraj, actor Mammootty, playback singer Alka Yagnik and cricketer Rohit Sharma are among 65 prominent personalities who will receive the Padma Awards from the President today. Instituted in 1954, these awards are announced on the occasion of the Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinction and is given for distinguished and exceptional achievements in various fields and disciplines, including art, literature, education, sports, medicine, social work, science and engineering, public affairs and trade and industry. Soumya Sharan, Akashwani News, Delhi.
3: New Services Division of Akashwani is broadcasting special programs as part of our series People's Padma on Akashwani. Through these episodes, we bring insights into the lives and contributions of Padma awardees.
6: Finally, idea for human milk bank, and I started then the first human milk bank in Asia.
7: Designed many equipment for measurement of materials, actually characterization of the materials like resistivity, thermoelectric power, which is a very sensitive property. All these things we developed it ourselves at a very very low cost.
8: मैं 10-12 वर्षापासून मी तर शिकायला लागलो पण आता मला इकडे व्यवसाय नाही.
9: I started learning the tarpa when I was 10 to 12 years old. This ancient art is a matter of pride for us Adivasis, and we have preserved it.
10: My mama, when he came to know that I too have hemophilia, he used to tell me he should become a doctor or do some research in this field.

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली

फिल्मेलु डिक्रिमेस्टिंग शुक्पेका गजता गीत फिल्मेलु लता मंगेशकर तंग महेंद्र कपूर ने सनाजत हसरत जयपुर लु अयंग श्रीकन कल्याणजी आनंदजी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचा का उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। कल हुई

बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला ये समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुंच बढ़ाएगा। यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज पिछले सप्ताह होर्मुज जल डमरू मध्य को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाड़ा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल है। फीफा विश्व कप 2026 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप आई के मुकाबले में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया। इसके साथ ही फ्रांस के नॉकआउट चरण में पहुंचने का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Sunil Verma. Prime Minister Narendra Modi has said, the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said the country's achievements over the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
1: Bharat fast-growing economy bhi hai, ek credible economy bhi hai. Aur Bharat rising power ke saath-saath super power tak le gaye. Lekin main itna zarur kahunga कि भारत रिलायबल पावर है. मैं अभी दो तीन दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है सबसे बड़ा सिद्धांत है.
0: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said world leaders recognize India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. Highlighting the government's 12 years in office, the Prime Minister said initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of khadi and support for local products succeeded because citizens embraced the spirit of nation building.
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय हर कदम हर प्रयास उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है. स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया. देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं.
0: Mr. Modi said nearly 25 crore people had moved out of poverty in recent years, leading to the emergence of a large new middle class and boosting economic activity. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. The President will confer 65 Padma Awards today. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, will help Indian farmers, fishermen, artisans and small businesses to prosper globally and accelerate job creation. Writing an article for an English daily, the minister said that the agreement, which will come into force on the 15th of July this year, will provide comprehensive market access for Indian goods in the United Kingdom across a wide range of sectors. He said that it will immediately eliminate tariffs on about 99% of tariff lines, creating enormous opportunities for Indian exports. Uttar Pradesh government has taken action against four state government officials in connection with the Lucknow fire incident, which claimed lives of 15 students. The state police has registered a case against six individuals and arrested four accused persons last night. Four officials from the Lucknow Development Authority, Fire Department and Electricity Department have been suspended following directives from Chief Minister Yogi Adityanath. At least 15 people, mostly students aged 16 to 25, died in the tragic fire yesterday afternoon. The fire broke out at an animation coaching center operating above a shop in the Purnia area of Aliganj, triggering panic amongst students. Nine students were injured and have been admitted to King George's Medical University, Lucknow. Most of the deaths were caused by suffocation. Iran has denied Vice President J.D. Vance's claim that Tehran will allow nuclear inspectors back into the country after the first round of negotiations in Switzerland. And Indian equity markets open on a flat note today after a multi-session rally driven by easing tensions in West Asia. Sensex opened at 77.086, down 8 points, while Nifty started the session at 24,071, lower by 32 points. That is the end of the...
2: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल रहा है। उर्वरक लेकर आ रहे चार जहाज हुर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान एलएनजी विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। ईरान ने अमरीकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के दावे का खंडन किया कि अमरीका अब परमाणु निरीक्षकों को फिर आने देने की अनुमति देगा। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां, विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
1: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे। और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
2: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। भारत और मोरक्को के बीच आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण तथा बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की गई। यूरिया, डाई अमोनियम फास्फेट और सल्फर लेकर आ रहे चार भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि देश में कुल उर्वरक भंडार 196 लाख टन का है। पिछले वर्ष इसी अवधि तक यह आंकड़ा 168 लाख टन था। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। दोहा में भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार की रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा में भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए थे। ईरान ने स्विट्जरलैंड में अमरीका के साथ वार्ता के पहले दौर के बाद अमरीकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के इस दावे का खंडन किया है कि ईरान अब परमाणु निरीक्षकों को हथियारों के निरीक्षण की अनुमति देगा। श्री जेडी वेंस ने दावा किया कि ईरान बातचीत के बाद परमाणु निरीक्षकों को आने देने की अनुमति देने पर सहमत हो गया है। श्री वेंस ने यह भी कहा कि इस बारे में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से शीघ्र बातचीत हो सकती है। दोनों देशों के बीच कल बातचीत में अमरीकी वित्त विभाग ने ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों से 60 दिन की छूट दी है। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी तथा ईरानी कच्चे तेल का उत्पादन अमरीकी डॉलर में बिक्री और आपूर्ति स्वीकृत हो जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने लग्जमबर्ग के विदेश मंत्री जेवियर बेटेल और वहां के लोगों को उनके राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत लग्जमबर्ग साझेदारी लगातार और मजबूत होती रहेगी। और अब खेल जगत के समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
2: जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल रहा है। उर्वरक लेकर आ रहे चार जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। कतर ने रास लफान LNG विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। ईरान ने अमरीकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के दावे का खंडन किया। ईरान अब परमाणु निरीक्षकों को फिर आने की अनुमति देगा। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं पीतल पर नक्काशी के विशिष्ट कलाकार चिरंजी लाल यादव के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं संजय तिवारी।
1: सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: धन्यवाद जी।
1: जब आपको ये पता चला कि आपको चयनित किया गया है, कैसा लगा आपको उस टाइम?
2: मैं मुरादाबाद बुद्ध विहार कॉलोनी में एक प्रोग्राम लगा था, तो उसमें था। वहाँ पर जो है हमारे डीआरसी ऑफिस के योगेश कुमार जी थे उपायुक्त, और डीएम साहब थे, कमिश्नर साहब थे आनंद सिंह। उन्होंने बताया कि भाई वो घोषणा हो गई है, तो वो जो है हटाफट दौड़े दौड़े आए वो। उन्होंने सबसे पहले डीएम साहब ने और कमिश्नर साहब ने बधाई दी।
1: आपने ऐसा क्या किया है, आपके काम की क्या खासियत है, क्या काम करते हैं आप, इसके बारे में डिटेल से बताइए।
2: सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 1970 से बराबर काम कर रहा हूँ। बीच में बहुत कठिनाई, लेकिन काम नहीं छोड़ा मैंने इस काम को देखते हुए। और जो मैंने बच्चों को ट्रेनिंग दी है, तो बोले कि भाई ये इनको जो है इनाम इनाम मिले हुए हैं पहले से ही, तो सब कुछ देख कर जो है उन्होंने ऐसा किया। ये
1: क्या क्या काम करते हैं आप, कैसी नक्काशी करते हैं?
2: जब हम 20-22 साल की उम्र में थे पढ़ाई करने के बाद, तो हम श्री अमर सिंह जी से हमने काम सीखा। ये काम सीखने के उपरांत तो वहाँ जो है 3 साल की ट्रेनिंग चली थी सरकारी, तो उसमें जो है हमने ट्रेनिंग पाई, तो 100 रुपये महीना भी हमें मिलता था और काम भी सिखाते थे वो। इसके उपरांत तो जो है हम 4-5 साल तक वो काम किया, उच्च कोटि के हमने काम सीखे, जो कि आज हमारे जो है जीवन में काम आ रहे हैं वो। और हमने मैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है जी। तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है, इसलिए जो है सुबह को 4-5 घंटे या 3 घंटे काम किया जाता है। हमारी संगत जो रही वो ऐसी रही कि अपने ही मतलब सीनियर के साथ रहना, उनसे जानकारी लेना, उनके पास बैठना उठना, और यारों का भी हमें ज्ञान मिला।
1: काम के सिलसिले में आप पूरे देश में भी गए हैं और शिशु में भी गए हैं, तो वहाँ से क्या सीख मिली और क्या लेकर आए, क्या देकर आए वहाँ?
2: दिल्ली में गए थे, दिल्ली में जो है हमने बहुत प्रोग्राम किए हैं, कुतुब मीनार है, लाल किला है, तो वहाँ से हमें जानकारी मिली डिजाइनों की, और डिजाइन सेंटर भी घूमे हम वहाँ पर, डिजाइन लेके वो ही आइटम पर जो है वो केरा, तो नया डिजाइन माना गया, तो हम जो है घूमते घूमते जो है ऑल इंडिया में पूरे घूम लिए, अपने काम का प्रदर्शन भी किया। और राजस्थान के हैं, और बेंगलोर में चित्रकला परिषद है, चित्रकला परिषद में जो है वहाँ पर हमने जो है पुरानी इमारतों का भी डिजाइन किया, कैसे कैसे मतलब ये टहनी बनती है, कैसे डिजाइन बनते हैं, जो झालर वहाँ बन हुई है वही झालर हमने अपने आइटम पर बनाई है, तो उससे जो है नयापन आया।
1: विदेशों में कहाँ कहाँ आप गए, क्या क्या किया आपने?
2: विदेशों में हम बांग्लादेश गए, फ्रैंकफुर्ट जर्मन सिल्वर जर्मनी
1: जी जी,
2: तो वहाँ पर अपने काम का हमने डेमो किया, प्रदर्शन किया और बिक्री भी की।
1: तो अब जो है मौजूदा सरकार से, विशेष रूप से केंद्र सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
2: केंद्र सरकार सही काम कर रही है, बढ़ावा दे रही है हस्तशिल्पियों को। इसके अलावा हम तो यही चाहेंगे सरकार जो है किसी तरह की ऐसी योजना बनाए जिससे कि ये लड़के, नई पीढ़ी के बच्चे जो है काम सीखें।
1: आप क्या चाहते हैं कि नई पीढ़ी इस काम के लिए आगे आए?
2: हम तो चाहते हैं कि भाई कम से कम 30-40 बच्चों को ट्रेनिंग दें, तो उसमें से अगर 10 भी कामयाब हो गए तो काम बढ़ेगा।
1: आपने अपने घर में बच्चों को कितना ये हुनर जो है बांटा है, सिखाया है?
2: वैसे तो हमारी फैमिली में सभी लोग काम करते थे, हमारी वाइफ भी करती थी, हमारे 2 बेटे हैं ये भी करते, कुप सिंह जी है, इनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, स्टेट अवार्ड मिला हुआ है, ये काम कर रहे हैं और हमारा भी हाथ बटाते हैं।
1: इस काम को लेकर भविष्य कैसा दिखता आपको?
2: हाँ, भविष्य सही है, क्योंकि हमारा जो काम है वो साधारण काम नहीं है, हमारा उच्च कोटि का काम है, इसके कारीगर बहुत ही कम है।
1: तो आप चाहते हैं कि आप जैसे जो आपकी विशेषता है वो और नई पीढ़ी पे भी आए और लोग बताएं?
2: हम तो चाहते हैं कि कोई ना कोई भी हमारी मृत्यु के बाद जो है कम से कम नाम तो रहे कि भाई हमें जो है वहां से जानकारी मिली है, प्राप्त हुआ है, उनके शागिर्द हैं, काम सीखे कोई ना कोई लड़का, तो हम बता सकते हैं।
1: सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो कुछ ऐसा काम करे जो ये आपका नक्काशी का काम, लोग इंटरेस्ट लें उसमें, युवा इंटरेस्ट लें?
2: हाँ, कम से कम 1 साल का तो वो ट्रेनिंग जो है प्रशिक्षण ले, वो लड़का 23 साल में कारीगर बन जाएगा वो, स्किन को ट्रेनिंग सेंटर खोले है, उसमें मास्टर कैप्टन के पद पर जो है वो चुने, हमें चुने है किसी को चुना, तो काम सीखना चाहिए, लगन से भी काम सिखाया उस आदमी को जो है मौका मिलना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं 1982 में मुझे मास्टर कैप्टन के पद पर चयनित किया था, तो मैं उड़ीसा स्टेट गया था डिस्ट्रिक्ट पुरी, तो वहां मैंने लगभग 200 कारीगरों को काम सिखाया वहां पर, तो वहां कामयाब हो गए, तो मैंने 2 साल तक वहां पर रहा हूँ।
1: आपको ये काम करते हुए कुछ सम्मान भी मिले हैं, क्या क्या अवार्ड मिले हैं अब तक आप?
2: मैं 1970 से तो काम में जुड़ा हुआ हूँ, काम करते करते उच्च कोटि का भी जो काम है उसकी गुणवत्ता जो हासिल की है मैंने, इसके बाद में जो है स्टेट अवार्ड मुझे 2 बार मिल गया, के बाद में नेशनल अवार्ड मिला, नेशनल के बाद में शिल्प गुरु मिला, शिल्प गुरु के बाद में इसकी घोषणा हो गई। और मैंने जो अब तक प्रोग्राम किए हैं प्राइवेट नहीं किए हैं, सारे सरकारी हैंडीक्राफ्ट बोर्ड के जो एग्जीबिशन लगती हैं, ताल कटोरा, प्रगति मैदान, इंडिया गेट पे सूरजकुंड मेला है, आगरा ताजमहोत्सव है, तो मैंने ऐसे ऐसे प्रोग्राम किए हैं, तो वहाँ मेरी चर्चा होती है, सब टीवी पर दिखाते हैं।
1: आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है और क्या क्वालिफिकेशन आड़े आई इसमें?
2: 7वीं पास किया था, मैं तो बहुत ही गरीब परिवार से हूँ जिसका कि मतलब बड़ा मुश्किल था आलन पालन, तो बस पढ़ाई करने के बाद इस काम में लग गया। काम करने के बाद तो मेरे मन में यही इच्छा थी कि भाई हम जो है मजदूरी ना करके जो है सप्लाई का काम करें, खुद बना के बिक्री करें, तो जो हमारे सीनियर थे घासीराम जी उनके साथ मिलकर मैंने काम किया ही है, तो सप्लाई का काम भी मेरा चल गया, और सप्लाई काम ऐसा चला कि अब हर स्टेट में हमारा माल जाता है, सरकारी शोरूम में मेरी सप्लाई जाती है।
1: आपके कहने का मतलब ये है कि अगर आदमी हुनर सीख ले तो बहुत ऊंचे मकाम पर
2: जी तो अपना रोजगार जो है खुद मत चला सकता
1: और फेमस भी हो सकता, फेम भी पा सकता
2: जी। मुझे एक साहब मिल गए थे वहीं उड़ीसा प्रोग्राम में, तो आए उन्होंने बधाई दी, बोले चिरंजीवी लाल आप ही हो क्या? मैंने कहा हाँ जी। बोले वेशभूषा से और आपके आचरण से तो नहीं मालूम होता है, तो मैंने कहा मैं तो साहब साधारण रहता हूँ, मैं तो कारीगर आदमी हूँ, तो बहुत खुश हुए वो।
1: तो ये अगर रोजगार इसमें कमाना चाहते हैं जो युवा है खास तौर से, तो उनके लिए क्या कहने चाहिए?
2: देखो युवा जो है ना वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन रुचि होनी चाहिए मन में, तो जब रुचि होगी जब तो काम कर पाएगा, रुचि है उसको कंप्यूटर काम में, तो हम उनसे कहते हैं कि भाई वो भी करो, इसमें भी तो आप थोड़ा सा समय दो, वो भी काम करेगा आपका कंप्यूटर भी।
1: तो सरकार ऐसा क्या करे जो, क्योंकि ये जो हमारी ये पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें हैं, पुरानी चीजें हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है और हमारी विरासत है एक तरह से ही, ये जिंदा रहे।
2: ट्रेनिंग सेंटर कौन ले चाहिए, और ऐसा नहीं नक्काशी के काम का हो, रंग भराई का हो, मोल्डिंग का हो, हाँ दो दो मतलब वो रखनी चाहिए कि सिलाई का हो, वेल्डिंग का हो,
1: इसका जो पूरा काम है वो सारा सिखाया जाए
2: जहाँ जहाँ इसके उद्योग है
1: जी जी।
2: जैसे यहाँ पर पीतल का उद्योग है तो मुरादाबाद में होना चाहिए, अमरोहा में लकड़ी ढोलक का काम है तो होना चाहिए, अलीगढ़ में है जहाँ छपाई का वहाँ होना चाहिए, इससे वृद्धि भी होगी।
1: तो आपकी ये जो उपलब्धि है, ये सम्मान मिला है, तो इसका श्रेय किसे किसे देना चाहेंगे?
2: सबसे पहले तो मैं अपने जो गुरुजी हैं हमारे जिनसे काम सीखा है, तो उनका भी मतलब मैं वो कहूंगा कि भी पता नहीं क्या भाग्य किस्मत की बात है जो कि वहाँ से हमें काम सिखाया हमें लगन से, वो हमने भी रुचि से सीखा, और मुझे जो है इस काम के लगभग 55 साल का अनुभव है।
1: अच्छा
2: हाँ बराबर काम कर रहा हूँ, बीच में बहुत अड़चन आई 1980 में जब दंगा फिसाद हुए थे, तो बड़ा मुश्किल था घर से बाहर निकलना, उस समय बहुत परेशानी का सामना करना।
1: घर वालों का क्या सहयोग रहा है?
2: तो ये तो मतलब हौसला बुलंद रखते थे, अरे चिंता मत करो सब हो जाएगा, कैसे खाना पीना का काम चलेगा वो सब हो जाएगा, तो हमारी मिसेज ने भी जो जोड़े हुए पैसे थे वो निकाले, हाँ बुरे वक्त पे जब हम ऐसे पैसे खर्च नहीं करेंगे तो कब करेंगे, तो काम चलता रहे, मतलब हिम्मत नहीं आ रही, हम काम छोड़ा नहीं, तो आज उसी की बदौलत है जो इस काम मतलब उन्नति पाई है हमने।
1: तो ये थे मुरादाबाद निवासी चिरंजीव लाल यादव, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी पीतल पर नक्काशी के विशिष्ट कलाकार चिरंजीवी लाल यादव के साथ विशेष बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे संजय तिवारी। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है और अब कार्यक्रम दिल का मेल बॉक्स। जी हाँ, जहाँ आपके दिल की बातें आप हम तक पहुँचाते हैं, आपकी फरमाइशें आप हम तक पहुँचाते हैं। लेकिन कैसे पहुँचाएंगे फरमाइशों के लिए, जल्दी से नोट कीजिए हमारी ईमेल आईडी fmgoldairdelhi@gmail.com। नोट कर लीजिए और हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तब तक लता मंगेशकर जी की आवाज़ में ये गीत।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और दिल का मेल बॉक्स कार्यक्रम में हमारे पास में आपके दिल के मेल, आपकी फरमाइशें आने लगी हैं। उत्तर प्रदेश बागपत से संजय ढींगिया जी का मेल हमें प्राप्त हुआ है, भारत भूषण जी, मल्होत्रा TD मोहाली जी, साथ ही दिग्दर्शन गौर जी, संदीप जी, अनिल मोहन जी, बिट्टू जी और निसार अली जी कहते हैं कि कार्यक्रम अच्छा लग रहा है और लता मंगेशकर जी और मुकेश जी की आवाज में ये गीत सुनना चाहते हैं।
2: चांद के पीछे भाग रहा हूं मगर अब तक पकड़ नहीं पाया उसे।
3: एक बात बताइए।
4: क्या
3: ऐसा महसूस क्यों होता जैसे आपको कहीं देखा हो?
4: सपनों में देखा होगा
3: जी। मैं सपने बहुत देखा करता हूं।

जी हाँ, दिल का मेल बॉक्स। और ये देखिए, राजस्थान से, श्री गंगानगर से हमें मेहर अरोड़ा, ममता जी, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका हमें मेल प्राप्त हुआ है। और लिखते हैं कि कोई भी गीत ये सुनना चाहते हैं। मेल प्राप्त हुआ है आर कुमार जी का, पंजाब से। मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा सपरिवार ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं। दिलवार खान जी, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू फिल्म आंख से ये गीत को सुनना चाहते हैं जी। पूरी कोशिश रहेगी हमारी। और ब्रजेंद्र विश्वकर्मा जी, तारा देवी जी, सोनाली, सोनम, आशीष जी लिखते हैं, कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, गीत भी अच्छे लग रहे हैं। कोई भी गीत सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में, जी बिल्कुल आपके लिए ये गीत।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपकी रेडियो साथी अंशु अग्रवाल। फरमाइशें लगातार हमें मिल रही हैं और हरिद्वार से हमें ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मेहराज जहां ने मेल भेजा है और लिखते हैं कि नमस्कार दीदी जी, नमस्कार, कह रहे हैं कि कोई भी गीत हमें आप सुनवा दीजिए। जी बिल्कुल, पूरी कोशिश है। निसार अली जी हमें लिखते हैं, नमस्कार आरजे जी।

कोई भी गीत में हमें शामिल करें। बिल्कुल। और सुनील खेरा जी सुनना चाहते हैं नाम गुम जाएगा चेहरा, ये बहुत ही सुंदर फरमाइश, मेरे दिल के बहुत करीब है ये गीत। हरजिंदर शिंदा जी लिखते हैं हमें पंजाब से, सब परिवार इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और जसवीर जस्सी जी, इनका गांव है नधाना, पंजाब से ये हमारे साथ जुड़े हैं। महेश अग्रवाल जी फिल्म बाजार से सुनना चाहते हैं, और सब परिवार ये भी बहादुरगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं जी। बिल्कुल कोशिश है, और ये गीत आपके लिए, आपकी फरमाइश।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियां नागरिकों की प्रतिबद्धता से हासिल हुई हैं।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही हैं, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में 16वें ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। कल हुई इस बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला ये समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुंच बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 99% शुल्क तुरंत समाप्त हो जाएंगे और भारत से निर्यात बढ़ेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज पिछले सप्ताह होर्मुज जलडमरु मध्य को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में बिना किसी उतार चढ़ाव के खुला। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 20 अंक की बढ़त के साथ 77,116 पर, जबकि निफ्टी 24,098 पर बना हुआ था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit in New Delhi last night, the Prime Minister said the country's achievements over the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
1: Bharat fast growing economy bhi hai, ek credible economy bhi hai, aur Bharat rising power ke saath saath super power tak le gaye. Lekin main itna zarur kahunga ki Bharat reliable power hai. Main bhi 2-3 din pehle G summit se lauta hu aur duniya ka har neta, har desh is baat ko bhali bhanti samajhta hai कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
2: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said, world leaders recognize India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. The President will confer 65 Padma Awards today. Union Minister of State for Minority Affairs and Minister of State for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, George Kurian, has resigned from the Union Council of Ministers. President Draupadi Murmu has accepted the resignation of Mr. Kurian with immediate effect. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will help Indian farmers, fishermen, artisans and small businesses to prosper globally and accelerate job creation. Writing an article for an English daily, the minister said that the agreement, which will come into force on the 15th of July this year, will provide comprehensive market access for Indian goods in the United Kingdom across a wide range of sectors. Uttar Pradesh government has taken action against four state government officials in connection with the Lucknow fire incident, which claimed lives of 15 students. The state police has registered a case against six individuals and arrested four accused persons last night. Four officials from the Lucknow Development Authority, Fire Department and Electricity Department have also been suspended following directives from the Chief Minister Yogi Adityanath. At least 15 people, mostly students aged 16 to 25, died in the tragic fire yesterday afternoon. The fire broke out at an animation coaching center operating above a shop in the Purnia area of Aliganj, triggering panic among students. Nine students were injured and have been admitted at King George's Medical University, Lucknow. Most of the deaths were caused by suffocation. Iran has denied US Vice President J.D. Vance's claim that Tehran will allow nuclear inspectors back into the country after the first round of negotiations in Switzerland. In contrast, US Vice President J.D. Vance has claimed that Tehran agreed to admit nuclear monitors into the country after ongoing negotiations. The number of confirmed Ebola cases in the Democratic Republic of the Congo has risen to over 1,000. The country's health authority has confirmed the death of 267 people. The overall case fatality rate stood at 25.5%. Indian equity indices, Sensex and Nifty, opened on a flat note this morning. Sensex was trading at 77,116 with the gain of 20 points, while Nifty was holding above at 24,098 points. In football, FIFA World Cup, Algeria thrashed debutant Jordan by 2-1 in a Group J encounter in Santa Clara, USA today. In another match, Norway defeated Senegal 3-2 in their Group I clash today at the New York Stadium and sealed their progress into the round of 32. And that is the end of this news bulletin.

0: पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। इसके अंतर्गत सुनिए जम्मू कश्मीर में समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुने गए समाज सेवी ब्रिजलाल भट्ट के साथ हुई विशेष बातचीत। चर्चा का संचालन कर रहे हैं जगमोहन शर्मा।
2: नमस्कार, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्सियत की जिन्हें इस वर्ष पद्मश्री जम्मू कश्मीर से समाज सेवा के क्षेत्र में देने की घोषणा की गई है। हमारे साथ हैं ब्रिजलाल भट्ट जी, आपका आज के इस प्रोग्राम में स्वागत है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि आपको किन किन कामों के लिए ये मिल रहा है।
3: देखिए, अभी जो आपने बताया मुबारकबाद मुझे आप दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, जिस संस्था से मैं जुड़ा हूँ विवेकानंद राख मेमोरियल विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी, तो ऑब्जेक्टिव है मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग, मानव सेवा से राष्ट्र उत्थान। ये स्पिरिचुअली ओरिएंटेड सर्विस मिशन के जरिए होता है, इसलिए ये मैं समर्पित करता हूँ विवेकानंद राख मेमोरियल विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी को, जिन्होंने मुझे अवसर दिया नागडंडी के माध्यम से समाज सेवा कश्मीर में करने का। मैं ये समर्पित करता हूँ अपने जो हंड्रेड्स कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़े हैं, काम करते हैं, हमारी एक्टिविटीज में शामिल हैं। मैं खास तौर पर ये समर्पित करता हूँ कश्मीर में जो नई पौध है, हमारा जो यूथ है उनको।
2: आपके बारे में हम जानते हैं कि आप प्रशासनिक सेवा में रहे हैं और अब आप समाज सेवा के साथ जुड़े हैं। आपका ये सफर समाज सेवा के साथ जुड़ने का कब शुरू हुआ और कैसे आप प्रेरित हुए, आपका रुझान इस तरफ किस तरह से हुआ?
3: मैं गांव की पैदावार हूँ, अनंतनाग का रहने वाला हूँ। नागडंडी अनंतनाग से 7-8 किलोमीटर दूर है, तो बचपन से जुड़ा था, लेकिन सेवा में था, सेवा के सारा आयामों में, और खास तौर पर 90 में पलायन हो गया, निकल गए, तो उस टाइम मेरे दिल में ये बात आ गई कि ये जो सर्विस के बाद मैं कश्मीर में ही रहूं ताकि ऐसे कुछ कार्य करें जिससे ये विस्थापित समाज जो है फिर से अपने जड़ों के साथ जुड़े।
2: जी,
3: तो नॉर्मल अगर आप देखेंगे 850 ये जो प्रकल्प, जिसमें नागडंडी भी एक प्रकल्प है
2: जी,
3: तो सब प्रकल्प में या जितने भी 1000 केंद्र हैं सारे भारतवर्ष में, उनमें सारे एक्टिविटी चलती रहती है। संस्कार वर्ग में हो, योग वर्ग में हो, स्वाध्याय वर्ग में हो, केंद्र वर्ग में हो, ये एक्टिविटी नॉर्मल सब यूनिट्स में चलती है। लेकिन कन्याकुमारी मैनेजमेंट ने सोचा कि इन एक्टिविटीज के साथ जो ऑब्जेक्टिव में हमारे हैं, कुछ हम ऐसे ऑब्जेक्टिव एडिशनली जोड़ें जिससे ये जो विस्थापित समाज है फिर से अपने जड़ों के साथ जुड़े, जिससे कश्मीर में पीस प्रमोट हो और इंट्रा एंड इंटर स्टेट इंटीग्रेशन प्रमोट हो फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी।
2: जी, आपने विवेकानंद की बात की, स्वामी विवेकानंद, उन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया था भाईचारे का, और जैसा भारत का संदेश है वसुधैव कुटुंबकम कि पूरा विश्व जो है एक कुटुंब है, आप इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं जो ये काम कर रहे हैं, किन किन एक्टिविटीज के जरिए आप कश्मीर घाटी में प्यार का, अमन का संदेश पहुंचा रहे हैं?
3: हम विवेकानंद थॉट मिशन को लेके वहां काम करते हैं, तो नेशनल एक्टिविटीज में हमारा 10 दिन का योग शिक्षा शिविर होता है नागडंडी में, जिसमें 15-20 स्टेट्स का पार्टिसिपेशन होता है
2: जी।
3: आपको छोटा सा भारत नजर आता है वहां पर। स्पिरिचुअल रिट्रीट प्रोग्राम होता है, वो उसमें भी बाहर के स्टेट्स का पार्टिसिपेशन और हमारे JKUT का भी पार्टिसिपेशन होता है, वो आध्यात्मिक उस रूप में करते हैं। हमारा संस्कार वर्ग में बच्चों का प्रोग्राम्स होते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज जो कश्मीर में हम करते हैं, वहां हमारे बच्चे या बच्चियां काम करते हैं, सर्विस करते हैं, हम उनके बच्चों के बारे में सोचते हैं
2: जी,
3: तो उनको हम संस्कार वर्ग में उनके साथ उनको जोड़ना चाहते हैं, नागडंडी के साथ जुड़े भी हैं। अभी हमने 3 दिन का हमने संस्कार वर्ग में प्रोग्राम किया। ऐसे अब ये जो हम पीस प्रोसेस वहां करते हैं, पीस प्रोसेस जो मेरा मानना है, तब तक पीस प्रोसेस बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकती जब तक सिविल सोसाइटी मीट्स ना हो
2: जी,
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ, उनकी नजदीकियां ना बढ़े
2: जी,
3: वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सी के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर, जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई
2: थी,
3: उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करना है। मैं तो ये समझूंगा इस वक्त जो टॉर्च बेयरर्स कश्मीर में है, जो मैं काम करता रहता हूँ, मुझे लगता है ये यही यूथ है, चाहे मेजॉरिटी कम्युनिटी का हो या माइनॉरिटी कम्युनिटी का हो, हमें तो अब फॉलो करना चाहिए, हमें इनके पीछे पीछे चलना चाहिए। अगर हमने सोच रखी होती 89-90 में, हमने बुजुर्गों ने अपना रोल अदा किया होता, तो ये 36 साल का पलायन नहीं हमने देखना पड़ता। तो इस वक्त जो यूथ काम कर रहा है, यूथ समझ गया है, आईसीआईसीआई एक्टिव से कुछ नहीं निकलेगा, जो कुछ निकलेगा पेन से निकलेगा, और इसके रिजल्ट्स निकल गए। अभी मैं बता रहा हूँ अपना तजुर्बा, 2010 से मैं मुख्य सेवक के रूप में हूँ, मेरा टीम है बहुत बड़ा, उसमें हमारी मातृशक्ति भी है, उसमें हमारी युवा शक्ति भी है। तो हमने ये देखा कि इस वक्त एक चेंज नजर आई है, हर जगह हमारा ये जो दीप जल रहे हैं, जहां जहां अंधकार है वहां रोशनी हो रही है, और इस वक्त आप नौजवान के हाथ में कलम देख रहे हैं, और रिजल्ट है हमारा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, गांव का एक नौजवान वो हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है, कंपटीशन से आया है। इसी तरह कुलगाम में यंग बॉय कंपटीशन से आया है, श्रीनगर में यूथ है कंपटीशन से आया है। तो ये रियलाइजेशन आने लगी, और खास तौर पर पेरेंट्स जो हैं वो समझने लगे बच्चों को हमें संस्कार वर्ग में ट्रेनिंग देनी है, पढ़ाई की ट्रेनिंग देनी है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया, योग शिक्षा शिविर होते हैं, स्पिरिचुअल रिट्रीट प्रोग्राम होते हैं, आपका ये जो बाकी प्रोग्राम यूथ मीट्स होते हैं, तो संस्कार ये नेशनल प्रोग्राम्स है, हर जगह होते हैं। एडिशनली जो हमने कश्मीर के लिए किया है वो ट्रेडिशनल जो हम इवेंट्स किया करते थे, जैसे रामनवमी का हवन है वहाँ हर साल होता है, नागपंचमी का हवन है हर साल होता है, ज्येष्ठ अष्टमी माता खीर भवानी का हर साल होता है। बल्कि 97 में एक हमने सोचा कि हम एक ऐसी जगह लें कश्मीर में, सेंट्रली लोकेटेड हो कश्मीर में, जहां हर साइड से हर डिस्ट्रिक्ट से आराम से लोग आ सके, ये प्रोस्पेक्टिव में हमने देखा, उस टाइम के सिचुएशन को नहीं आगे क्या होगा। तो हम ऐसी जगह का चयन करें जो मैनेजेबल हो फेयरली फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, हम ऐसी जगह लें जिस पर टोटल आस्था हो कम्युनिटी की, डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी। तो खीर भवानी का चयन हो गया, वो जगह ले ली। आपको मैं बताऊं, मैं उस टाइम ब्यूरोक्रेसी में था लेकिन नागडेंडी के साथ जुड़ा था, तो दो ट्रक्स में नागडेंडी से सामान आया, 300 जीआई शीट्स पोल्स लाए और लेबर 20-25 लाए, लेकिन वो जो हमारा यूथ है तो वहां शेड बनाया खीर भवानी में, ताकि उसके शेड के नीचे हम ये भंडारा सेवा शुरू करें। तो 97 में शुरू किया, 400-500 लोग थे, लेकिन चलते चलते इस साल हमारा 27वां साल था, तो 30,000-35,000 लोग वहां आए, विस्थापित लोग, उसमें हमारी बहनें, हमारे जो भाई बच्चे उसमें होते हैं, इतने ही मेजॉरिटी कम्युनिटी के भी वहां होते हैं
4: जी।
3: अब इट्स नॉट ओनली दैट, मैंने देखा ये जो 97 से, वैसे मैं फिर 2010 से चेयरमैन भी रहा हूं, मैं देखता रहा एवरी एनुअली ग्रेजुअल इंक्रीज
4: जी।
3: तो वहां केंद्र बना, फिर देन इट बिकेम अवर पॉइंट ऑफ कंसर्न कि इसको हम, ये जो पीस वहां खड़ा हो गया, आराम से लोग आते हैं करते हैं, ये पीस कैसे लेटरली परकुलेट हो
4: जी।
3: तो अभी आपको मैं बताऊं, और खुशी है मुझे कि ये 15-20 जगह ऐसे हवन होते हैं कश्मीर में, चाहे आप बारामूला कुपवाड़ा में देखो, शुपियान मंजगांव में देखो, आप दिवसर कुलगाम में देखो, लोगरीपोरा में देखो, अकिनगांव में देखो, लुगबोन में देखो, सारे कश्मीर में ज्येष्ठ अष्टमी के ऐसे हवन होते हैं। तो पीस प्रोसेस हो गई, और ये हवन भी, इसमें जो लॉजिस्टिक सपोर्ट हमारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का लॉजिस्टिक सपोर्ट रहता है इसमें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए, हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें सपोर्ट एनकरेजमेंट होता है, तो ये चलते आ रहे हैं। तो ये प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं इसका हर साल ये असर होता है।
4: अब जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं तो इसको भारत के सर का ताज कहा जाता है, और अपने आप में ही एक छोटा हिंदुस्तान है, क्योंकि यहाँ भी अलग अलग मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले, अलग अलग जबान बोलने वाले लोग यहाँ पर मिलकर रहते हैं। और जम्मू कश्मीर की हम पूरी बात करें, जम्मू शहर जो बसा है, यहाँ शेर और बकरी को इकट्ठे पानी पीते देखा। कश्मीर की हम बात करें तो वहाँ अरमदारे कश्मीर, जिन्हें नंद ऋषि भी कहते हैं, वहाँ पर हिंदुओं और मुसलमानों की एक जैसी आस्था रही है। आप महाराजा हरि सिंह के समय की बात करें तो वहाँ एक मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदू राजा और सभी खुशहाल उसमें रहते हैं, ये खूबसूरती है हमारे जम्मू कश्मीर की। लेकिन बदकिस्मती से एक दौर ऐसा आया कि हम अंधेरे की तरफ चले गए, गुमराह हो गए, जिस तरह से भी। आज आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से जम्मू कश्मीर तेजी से खुशहाली, तरक्की, अमन के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है?
3: देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आपने ऐसी बात छेड़ी, आपने विद रेफरेंस रिकॉर्ड, मैं प्रैक्टिकली आपसे बताता हूँ। हमारी ज्वाइंट फैमिली थी अनंतनाग में, 40-50 लोग इस फैमिली में थे, एक साथ रहते थे, इंटीग्रेटेड थे। तो सब बच्चों का, हमारे सारे बच्चे जो हैं ईश्वर की कृपा से अच्छे अच्छे पोस्ट पर रहे हैं। तो हमारा ये था कि सवेरे उठना, 4:45 उठना, तो इंद्रनाग है वहां पर, चश्मा है, उधर नहाना, फिर केंद्र में जाना, गुरुद्वारा में जाना, वहां से प्रसाद लेना, उसके बाद हम देवी बल था उधर प्रसाद लेना, ऋषि साहब के जियारत के पास जाना, प्रसाद लेना, वो देते थे शीरीन, वहां हम चक्कर लगा के फिर हम घर जाते थे, फिर हमें चाय मिलती थी। ऐसा मेरा ही नहीं, सब बच्चों का ऐसा होता था। यही हमारे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे हैं उनमें भी यही संस्कार थे, और इन संस्कारों की वजह से हमारा बचपन जो ऐसा है, मैं इस वक्त सोचता हूँ मेरे दोस्त उस टाइम कहाँ थे, वही मेजॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे। जबानी याद, गुरुद्वारा एक जगह, मंदिर एक जगह और शेरबाग नीचे, तीनों एक जगह थे, किसी ने किसी का एक इंच नहीं खाया
4: जी।
3: अब इसको तो मैं कह रहा हूँ, और बचपन में जब हम जाते थे निकलते थे मुझे आशीर्वाद मिलता था, जो हमारे मुस्लिम मेजॉरिटी की फैमिली एल्डर्स, मेरे पिताजी के दोस्त और अपने पंडित बरादरी के जो एल्डर्स थे दोस्त, इतना हमारा भाई रहता था उनका, हम गलत काम नहीं कर सकते थे। मैं मुस्लिम वाले में ही रहता था, मुसलमान का बच्चा जो मेरे से छोटा मेरे साथ तेजी से भी नहीं बात कर सकता था। अगर मैं बोलूंगा वो हो गया ये हो गया तो मैं रिवर्स गियर में जा रहा हूँ, हमको आगे चलना है। हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे और माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे जो हैं एक साथ हैं, और आपको एक खास तौर पर मैं सारे नेशन को बताना चाहता हूँ, ये जो 5-6 हजार बच्चे विस्थापित समुदाय के वहां गए हैं, आई कीप टेलिंग देम यू आर द एम्बेसडर्स, आप में हिस्ट्री में आपका नाम लिखा जाएगा। दे हैव नॉट गॉन देयर टू सर्व मॉनिटरी बेन्स के लिए, वो तो करना है, वो इसलिए गए हैं कि उनको अपनी मातृभूमि की खुशबू ने लाया है। आई हैव इंस्टेंसेस मोस्ट ऑफ देम, एक कोपाड़ा बारामूला में रोहित रैना है, वो अच्छे काम कर रहा था बाहर, तनख्वाह भी अच्छी ले रहा था, मिसेज भी सर्विस कर रही थी, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो वापस आ गए हैं, वहां अपने कोपाड़ा में सेटल हो गए हैं, बारामूला में सेटल, ऐसे बहुत से बच्चे हमारे विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वो वहां काम कर रहे हैं। ये जो हमारे बच्चे हैं सारे 5-6 हजार बच्चे जिनको मैंने कहा एम्बेसडर्स, इतने ही नए बच्चे मेजॉरिटी कम्युनिटी के, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने समझ लिया कि ये जो कंपोजिट कल्चर है ये क्या था
4: जी,
3: कश्मीरी पंडित क्या था,
4: असली खूबसूरती वही
3: थी, एक गुलदस्ता था, अलग अलग फूल थे
4: जी,
3: और वही होगा जो इस वक्त का मैं देख रहा हूँ। देखे रिटायरमेंट के बाद आई शुड ऑल्सो हैव बीन विथ माई चिल्ड्रन, आई शुड हैव गॉन, इधर उधर सब जाते हैं, मुझे फख्र है कि आई एंजॉय द डिस्टिंक्शन कि मैंने फैसला किया उसके बाद नहीं, मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए।
4: भट्ट साहब, आखिर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आज जो माहौल है खुशनुमा माहौल है, हम तेजी से अमन की तरफ, तरक्की की तरफ, खुशहाली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इसमें हर एक इंसान का, हर एक जम्मू कश्मीर वासी का क्या फर्ज बनता है कि इस माहौल को और सपोर्ट करें और एक बार फिर जम्मू कश्मीर वही जम्मू कश्मीर बन जाए जो कुछ वर्ष पहले हुआ करता था?
3: देखिए, एक माहौल था कश्मीर में, बच्चा कोई गलती नहीं करता था, कहीं से भी बाहर से भी शिकायत आई या कहीं से भी आभास हो गया पिताजी को या माताजी को कि बच्चे ने ये कर दिया, उसको डांटते थे
4: जी,
3: वो समझते थे, पेरेंट्स विजिलेंट थे। लेकिन थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ, ये जो वॉच नहीं रहा, ऐसा नहीं हो सकता है कि बच्चे को पेरेंट चाहे तो बच्चा कोई गलत काम करे, अगर करता है दैट इज द पेरेंट फेलियर
4: जी। नहीं, यही आप कहना चाहते हैं कि हर एक नागरिक को एक विजिलेंट होके काम करना है, एक निगरान बनना है, अपने बच्चों पे नजर रखनी है, नौजवानों पे नजर रखनी है, ताकि दोबारा से हम पटरी पर जो आ गए हैं दोबारा से हम पथ भ्रष्ट ना हो, पटरी से ना गिरे।
3: एक चीज और बताना चाहता हूँ, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड एंड अंडरस्टूड वेरी क्लियर, ये जो मैं कह रहा हूँ देखिए, इसको कैश करने की जरूरत है। हमारा जो नौजवान इसमें कश्मीर में है उनका जोश और पेरेंट्स का होश
4: जी,
3: जब एक यूनिसन में आएगा कश्मीर फिर वही गोशवारा बनेगा, कश्मीर वही फिर गुलदस्ता बनेगा, कश्मीर वही फिर टॉर्च बेरर बनेगा, नॉट ओनली फॉर इंडिया, फॉर होल ऑफ वर्ल्ड, बिकॉज वी बिलीव इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड
4: जी।
3: और मुझे उम्मीद है भारत को विश्व गुरु ले जाने के लिए हमारे कश्मीर के यूथ का, चाहे किसी भी फेथ से हो, आगे आगे हमारा यूथ होगा, ऐसा मेरा मानना है
4: जी। तो भट्ट साहब, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
3: धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी, जिसके अंतर्गत आपने सुना जम्मू कश्मीर में समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुने गए समाज सेवी ब्रजलाल भट्ट के साथ हुई विशेष बातचीत। चर्चा का संचालन कर रहे थे जगमोहन शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत

किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल आपने ट्यून किया है 100.1 MHz और आप सुन रहे हैं अंशु अग्रवाल को। तो अब वक्त है आज के भारत भ्रमण का। तो आज भारत भ्रमण पर हम आपके लिए लेकर आए हैं पहाड़ों की रानी, जी हाँ, यानी ऊटी की तस्वीर। भारत के दक्षिणी भाग में स्थित ऊटी तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है और बेहद खूबसूरत है, सच मानिए। यह शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, चाय के बगानों, बादलों से ढकी पहाड़ियों और सुखद मौसम के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह मौसम और ये शहर दोनों बहुत खूबसूरत है, लेकिन ऐसे में हम इस शहर की टॉय ट्रेन की खूबसूरत यात्रा को नहीं भूल सकते हैं। जी हाँ, तो आप भी इस यात्रा की पेटी को बांधिए और सबसे पहले हम सुनेंगे इन सुंदर पहाड़ियों के लिए ये सुंदर गीत।

जी हाँ, तो आज हम जिस पहाड़ियों के बीच में जिन सफर पे निकले हैं, वो सफर है, वो तस्वीर है ऊटी की। ऊटी के इतिहास की अगर हम बात करें तो ऊटी का इतिहास नीलगिरी पर्वतमाला में रहने वाली टोडा जनजाति से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि सदियों पहले यह क्षेत्र टोडा समुदाय का निवास स्थान हुआ करता था। साथ ही 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश अधिकारियों ने इस क्षेत्र की खोज की और ऐसा कहा जाता है कि सन 1824 में एक शख्स जिनका नाम था जॉन सुलिवन आए और उन्हें यहाँ का मौसम, यहाँ का नज़ारा, यहाँ की पहाड़ियाँ इतनी खूबसूरत लगी, इतनी पसंद आई, और क्यों भी ना आती, ऊटी शहर ही ऐसा है, इतनी पसंद आई कि उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में इस शहर को विकसित करना शुरू कर दिया। और फिर क्या था, धीरे धीरे ऊटी मद्रास प्रेसिडेंसी की समर कैपिटल बन गया और अंग्रेजों ने यहां पर चर्च, बंगले, सड़कें और बाग बगीचे विकसित करने शुरू कर दिए। अब बात करें यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध एक पर्वतमाला, आप सोचिए कौन सी पर्वतमाला की मैं बात कर रही हूँ। जी हाँ, नीलगिरी पर्वतमाला, जो ऊटी नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। नीलगिरी का अर्थ है नीले पर्वत। सोचिए, सोचते हुए ही कितना खूबसूरत मंजर ये लगता है ना। और सोचिए जब हमें वहां जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि आज इस तस्वीर कार्यक्रम में हम वहां कैसे जा सकते हैं, वहां जाकर हम क्या खरीद सकते हैं, कहां कहां घूम सकते हैं, इन सारी तमाम बातों के बारे में हम लोग यहां जानकारी लेने वाले हैं। तो कहा जाता है कि जब यहां पर पाए जाने वाले विशेष फूलों से और दूर से दिखने वाली ये नीली आभा के कारण इन पहाड़ियों को नीलगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। जी हाँ,

जी हाँ दोस्तों, गजब का है ये दिन। और ये दिन गजब का इसलिए है क्योंकि हम निकले हैं नीलगिरी, नीले पहाड़ों की जो वादियां जहां पर स्थित हैं, यानी आज की तस्वीर ऊटी के नाम। हम बात कर रहे हैं ऊटी शहर की। और ये जो गीत आपने सुना, ये गीत आप तक पहुंचाने का मेरा एक मेन मोटिव था। और वो मोटिव ये था कि इस गीत की जो शूटिंग हुई है वो आपके शहर जहां हम बात कर रहे हैं ऊटी में हुई है। जी हाँ, सो ऊटी एक बहुत ही खूबसूरत घूमने का शहर तो है ही, साथ ही यह बॉलीवुड का एक आउटडोर स्टूडियो भी माना जाता था, जहां हमारी फिल्म के बहुत से मशहूर गीतों की शूटिंग हुई है। आपको बताना अब ये है कि ये जो गीत आपने सुना, इतना तो पता लग गया कि ऊटी में इसकी शूटिंग हुई है, लेकिन ऊटी में किस जगह इस

0: गीत की शूटिंग हुई है ये आप मुझे बताएंगे।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार।

0: न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपने ट्यून किया है और आज की तस्वीर में ऊटी। अब बात करेंगे ऊटी के मौसम की। तो दोस्तों, ऊटी का मौसम पूरे साल भर बहुत ही सुहावना रहता है। बात करें मार्च से जून तक तो हल्की गर्मी रहती है, तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, लेकिन घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय समय यही माना जाता है। जुलाई से सितंबर तक थोड़ा मॉनसून रहता है, हरियाली बहुत ज्यादा देखने को मिलती है और झरने और घाटियां अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। अक्टूबर से फरवरी में तापमान 5 से 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, लेकिन जो शांत वातावरण को पसंद करते हैं उनके लिए यह समय एकदम आदर्श माना जाता है। अब बात आती है कि ऊटी आखिर हम पहुंचे कैसे, कैसे जाएं? बिल्कुल बताएंगे, लेकिन पहले

आ गया ना दोस्त, ये गीत सुनते ही आपकी आंखों के आगे एक चित्र सामने आया, और वो चित्र है कि एक रेलगाड़ी है, वादियों से घिरी हुई, धुआं आ रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। जी हाँ, ये जो सीन था, ये जो वादियां हमने इमेजिन की है, ये है नीलगिरी माउंटेन रेलवे की यात्रा। ये जो गीत है चल चाहिए चाहिए, ये गीत ऊटी की उसी जगह पर शूट किया गया है, और बहुत ही सुंदर रेल यात्राओं में से एक यात्रा ये मानी जाती है। और इतना ही नहीं, इसके लिए इसको यूनेस्को द्वारा प्रतिष्ठित एक मान भी दिया गया है। और जैसा कि अब हमने मौसम की बात कर ली है, तो हमारे जहन में बात आती है कि आखिर यहाँ पहुंचा कैसे जाए। तो हवाई मार्ग की अगर हम बात करें, तो ऊटी से सबसे निकट हवाई अड्डा है कोयम्बटूर। तो आप अगर हवाई से यात्रा अपनी प्लान कर रहे हैं, तो आप इसके माध्यम से जा सकते हैं। अगर रेल मार्ग की हम बात करें, तो रेल मार्ग यहाँ पर नीलगिरी माउंटेन रेलवे स्टेशन बहुत ही प्रसिद्ध है, जो ऊटी से चलने वाली एक यात्रा है, और आप इसके माध्यम से जा सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से अपनी यात्रा को प्लान कर रहे हैं, तो बेंगलुरु, मसूर, कोयम्बटूर और चेन्नई से सड़क मार्ग द्वारा बहुत ही आसानी से ऊटी तक पहुंच सकते हैं।

0: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
1: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
2: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
1: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
2: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। ट्यून किया है आपने 100.1 मेगाहर्ट्ज। और आज की तस्वीर में हम बात कर रहे हैं ऊटी की। तो ऊटी हम पहुंच चुके हैं, लेकिन पहुंचने के बाद ऊटी में आप कहां कहां घूमे, बात करेंगे वहां के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। अब ऊटी जाए और ऊटी की झील पर अगर ना जाए तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। तो ऊटी की झील अपनी चेकलिस्ट में सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ऊटी की झील सन 1824 में बनाई गई एक बहुत ही कृत्रिम झीलों में से एक है। यहाँ बोटिंग, साइकिलिंग और परिवार के साथ मनोरंजन की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं डोडा बेटा पीक पर। यह नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है और यहाँ से आप पूरी घाटी और आसपास के पर्वतों का शानदार दृश्य देख सकते हैं। जी हाँ, इसके बाद आप बोटैनिकल गार्डन जाना ना भूलें, क्योंकि यह सन 1848 में स्थापित लगभग 55 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ हजारों प्रकार के पौधे और फूल को उगाया जाता है जिनको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं रोज गार्डन। जी हाँ, भारत के सबसे बड़े गुलाब उद्यानों में से एक है ऊटी का रोज गार्डन, जहाँ पर तरह तरह के हजारों किस्मों के गुलाब आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद ऊटी जाएं और चाय के बागानों में ना जाएं, ऐसा मत करिएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऊटी की पहचान है इसके विशाल चाय के बागान। जी हाँ, यहाँ पर पर्यटक चाय की खेती और निर्माण प्रक्रिया, चाय की पत्ती कैसे बनाई जाती है, इसको भी बहुत करीब से देख सकते हैं। इसके बाद में ऊटी की संस्कृति, क्योंकि कहीं भी हम जाते हैं तो वहाँ की वेशभूषा, वहाँ का पहनावा, वहाँ का खाना पीना और वहाँ की संस्कृति को हमारे साथ जरूर हमें सम्मिलित करना चाहिए। ऊटी की संस्कृति की अगर बात करें तो वहाँ पे तमिल परंपरा और जनजातीय विरासत का एक सुंदर मिश्रण आपको देखने को

निकलेगा। यहाँ की प्रमुख जनजातियां, जैसे कि शुरुआत में हमने बात करी कि टोडा जनजाति तो वहां है ही, साथ ही कोटा, कुरुम्बा, इरुला, यह सारी जनजाति भी अपनी विशिष्ट वेशभूषा, हस्तशिल्प और पारंपरिक जीवन शैली के लिए जानी जाती है। साथ ही वहां के स्थानीय भोजन की अगर हम बात करें तो ऊटी में दक्षिण भारतीय भोजन विशेष रूप से लोकप्रिय है। मुख्य व्यंजन की अगर बात करें तो इडली, डोसा, सांबर, उत्पम और साथ ही बहुत ही वहां की प्रसिद्ध है फिल्टर कॉफी। इसके अलावा यहां की घर में बनी चॉकलेट्स और नीलगिरी चाय विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो ऊटी जाएं तो यह सब चीजों का आप आनंद जरूर उठाएं। तो आज की जो यात्रा थी ऊटी की थी, ऊटी में हमने बहुत कुछ जाना और ऊटी जाकर क्या खरीदना है ये तो हम भूल ही गए। ऊटी में आप खरीद सकते हैं नीलगिरी चाय, घर में बनी चॉकलेट्स, वहां के मसाले बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं और साथ ही हस्तशिल्प की वस्तुएं। आज की तस्वीर में ऊटी की जानकारी बस इतनी ही और कुछ ही देर में आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं, गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान को अपनी भाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़े रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे, गांव गणेशधाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी, और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे यही निवेदन रहेगा हमारा कि इसी तरह से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। स्वागत है एक बार फिर से, और आइए अब चलते हैं हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी भारत की विभिन्न झीलों के बारे में, याद है ना। हमने बात की थी मणिपुर की अनोखी झील लोकटक, हिमालय की सुरम्य वादियों में बसी मानसरोवर झील, ओडिशा की चिल्का झील और कश्मीर की डल झील की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब चलते हैं आज की चर्चा में। श्रोताओं, इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के विचित्र, रहस्यमयी और अनूठी गुफाओं में। सचमुच बड़ा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होगा उनके बारे में जानना, है ना। लेकिन पहले आपको ये तो बता दें कि हम गुफा को भौगोलिक रूप से परिभाषित कैसे करेंगे। तो आइए सुनते हैं इसकी परिभाषा। श्रोताओ, आम बोलचाल की भाषा में हम झील, पर्वत, लगून, मानसून जैसे शब्दों को तो कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में उसकी परिभाषा वैज्ञानिक रूप से नहीं जानते। श्रोताओ, गुफा पृथ्वी की सतह के नीचे या अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई खोखली जगह को कहते हैं। अगर आप पूछें कि इसे सरल शब्दों में कैसे कहें, तो आपको बता दूं कि धरती या पर्वत या समुद्र के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी खोखली जगह को गुफा कहते हैं। हाँ, ये कभी कभी मानव निर्मित भी हो सकती है। तो आइए अब आते हैं आज के विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अद्भुत गुफा की, जिसे हम भीम बैठका गुफा के नाम से जानते हैं। श्रोताओं, इस नाम के पीछे एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा है। ऐसा कहते हैं कि यह नाम महाभारत के भीम से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भीम इस स्थान पर रुके थे, भीम बैठका यानी भीम के बैठने की जगह। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। सचमुच ये बड़ी रोचक बात है। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। तो आइए श्रोताओं, अब जानते हैं कि भीम बैठका की गुफा है कहाँ। तो आपको बता दें, ये जगह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है, जो राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है, आपके मन में भी आ रहा होगा, और वो प्रश्न ये है कि भीम बैठका की गुफाओं का पता कैसे चला। तो श्रोताओं, इसके पीछे बड़ा मनोरंजक किस्सा है। वहां के स्थानीय लोग तो इन गुफाओं के बारे में जानते थे, लेकिन इसका पता विश्व को तब चला जब डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने इसके बारे में प्रामाणिक ढंग से जानकारी दी। तो आइए जानते हैं कैसे पता चला डॉक्टर विष्णु वाकणकर जी को। तो आपको बता दें कि डॉक्टर विष्णु वाकणकर एक जाने माने पुरातत्वविद रहे हैं। वर्ष था 1956। एक बार वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। ट्रेन विंध्य पर्वतमाला से होकर जा रही थी। श्रोताओं, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्टर विष्णु वाकणकर को जरूर याद रखिएगा। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ट्रेन की खिड़की से कुछ ऐसी चट्टानों और पहाड़ियों को देखा जो बड़ी कलात्मक लगी। वे दूसरी चट्टानों से भिन्न थीं। वे उन्हें अपनी फ्रांस और स्पेन की यात्रा के दौरान देखी गई प्रागैतिहासिक शैल चित्रों वाली चट्टानों जैसी लगी। तो फिर क्या था, वे उतर गए अगले स्टेशन पर और उस स्थान पर पहुंचे। बाद में उन्होंने बताया कि पहली गुफा में घुसते ही वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने वहां बहुत सारे शैल चित्र यानी पत्थरों पर बने चित्र देख लिए, जिन्हें हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। जी हाँ श्रोताओ, इन गुफाओं में 30,000 वर्ष तक पुराने शैल चित्र हैं, जो पुरापाषाण युग से मध्यकाल तक की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु वाकणकर को सन 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और वर्ष 2003 जुलाई में यूनेस्को ने भीमबेटका की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया। ये खोज पुरातत्व और मानव अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि भारत में मानव सभ्यता कितनी प्राचीन और निरंतर है। तो आइए श्रोताओं, आप जानते हैं कि इन गुफाओं में क्या ऐसी बात है जो इसे खास बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात मानव आवास है, जिसमें 600 से भी अधिक शैलाश्रय या रॉक शेल्टर्स हैं। ये प्रकृति द्वारा बने आवास हैं। इन गुफाओं में शिकार, सामूहिक नृत्य, युद्ध, पशु पक्षी और प्रारंभिक मानव की रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र हैं। श्रोताओं, इन चित्रों में गेरुआ, लाल, सफेद, पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ये रंग वनस्पति से बने हैं, इसलिए हजारों वर्षों बाद भी ये टिके हुए हैं। अगस्त 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। ये वो जगह है श्रोताओं, जहां संभवतः आदि मानव ने पहली बार पत्थरों की दीवारों को कैनवस बनाया। हम भीमबेटका की गुफाओं को भारत के इतिहास की पहली चित्र गैलरी भी कह सकते हैं। तो श्रोताओं, भीमबेटका की गुफाएं सचमुच अद्भुत हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन दोनों पतों पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी वसंती। श्रोताओं, ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण नेत्री वसंती के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
2: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया? माँ की गोद ने और नदियों की घाटियों ने। हजारों हजारों साल से माँ ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।

लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं। 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर अपने जंगलों को बचाने वाली गांव की ही एक अनपढ़ 50 वर्षीय बाल विधवा गौरा देवी थी।
1: और इस बार भी कोसी की रक्षा के लिए एक महिला ही आगे आई। हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: सन 1980 अप्रैल का एक दिन।
1: चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हां चल कर चल। अरे चल सब खोज रहे हैं तुझे। अरे चल ना जल्दी कर।
2: नहीं।

0: अभी तो उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था, और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।

अरे बसंती, बेटी तू बर्बाद हो गई, तेरी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई बेटी, अरे तू विधवा हो गई।

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है, मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई। मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो, ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको, तुम अपने जीवन दे सको, मायने दे सको।
0: बसंती घबराकर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते, वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
0: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसी दी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे
1: दीदी,
2: क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी, वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है, चल ठीक है दीदी, चलो चलो।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
4: क्या है, क्या करें है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।

कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

0: अब हम लौटते हैं लक्ष्मी आश्रम की ओर, जहां सुबह सवेरे झोला लेकर बसंती बहन गांव का रुख कर रही हैं। ऐसा करते हुए उन्हें 45 दिन हो चुके हैं। वो रोज सुबह 6 बजे बरासे घाटी के गांव की ओर चल पड़ती हैं। शुरू में कोई उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं था। एक दिन बसंती को महिलाओं का एक झुंड मिला। सभी के हाथों में रस्सी और दराती थी। वे सब बहुत तेजी से जंगल की ओर जा रही थी। बसंती दीदी समझ गई कि ये सब लेसाल गांव की महिलाएं हैं और जंगल में लकड़ी काटने जा रही हैं। बसंती दीदी ने उन्हें पुकारा।
1: अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
2: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
1: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
3: वो भला क्यों? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
1: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
2: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
3: हाँ।
2: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
3: और क्या
2: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
3: हाँ।
1: आमा मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल

0: ये कैसा सवाल है? क्या तुम नहीं जानती कि हमारे पेनाथ जंगल के बांज बुरांश के घने पेड़ प्राकृतिक जल को संचित करते हैं और उसी से कोसी का जन्म हुआ
1: और क्या?
0: है।
2: बिल्कुल ठीक। ऐसे में अगर हम जंगल काटेंगे तो कोसी में पानी घटेगा या बढ़ेगा?
1: घटेगा।
3: अब हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई।
0: खाली हमारे समझने से क्या होता है? हम अकेले क्या कर सके हैं?
2: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
0: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
1: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो
4: चलो चलो
1: जल्दी चलो, हम सबको बताते
5: हैं। और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सेल, खीरा कोटा, कांटली आदि गांवों में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

0: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: दस इशारे NCERT चंदक सत करने दिख रहे उमंग का चिकित्सक संग्या चुकनी स्पष्ट नजर आज आकाशवाणी लेने जुन्जिक दांत निमित्त

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ निफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निफेड किसानों की सेवा कर रहा है।
1: नाफेड ने एक प्रकार से नाफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत। तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
0: इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं।
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
2: They all constitute an important threat for us.
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राप्त दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है। अयोध्या राम मंदिर में प्राप्त दान के दुरुपयोग के आरोपों के सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने की 13 तारीख को एसआईटी का गठन किया था।

जय हिंद। स्वागत है आप सभी फौजी भाइयों का आज के इस वक्त के प्रोग्राम में। तो लीजिए सुनिए प्रोग्राम का ये पहला गाना, हाँ मैंने भी प्यार किया फिल्म से, कुमार सानू और सारिका कपूर की आवाज़ों में। गीतकार है समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

0: रिलैक्स।
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

ये फिल्म गाने आप आकाशवाणी ले से सुन रहे हैं। फौजी भाइयों के इस प्रोग्राम में लीजिए सुनिए ये अगला गाना, तुमको ना भूल पाएंगे, फिल्म से अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ों में। गीतकार है सलीम बिश्नोई और संगीतकार हैप्पी।

ये फिल्मी गाने आप आकाशवाणी ले से सुन रहे हैं। फौजी भाइयों के इस प्रोग्राम में लीजिए सुनिए ये अगला गाना सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में, दिल ने जिसे अपना कहा फिल्म से। गीतकार है समीर और संगीतकार हिमेश रेशमिया।

कुमार शानू और साधना सरगम की आवाज़ों में लीजिए सुनिए ये आग लगाना दामिनी फिल्म से। गीतकार है समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

फौजी भाइयों के इस प्रोग्राम में लीजिए, सुनिए ये अगला गाना लता मंगेशकर और बाबला की आवाज़ों में, चांदनी फिल्म से। गीतकार है आनंद बख्शी और संगीतकार शिव हरी।

अभी फौजी भाई मिस्टर आशिक फिल्म से ये गाना कुमार शानू की आवाज़ में सुन रहे थे। इस वक्त का प्रोग्राम समाप्त करते हुए हम आपसे इजाज़त लेते हैं। जय हिंद।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में गैर फौजी एजाजात देने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड अता करेंगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि दफा 370 की मनसूखी से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की 16वीं मीटिंग से खिताब करते हुए आबनाए हुरमुज खोले जाने का खैर मकदम किया है और कहा है कि इससे सप्लाई में रुकावटें दूर करने में मदद मिलेगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट असातजा भर्ती के इम्तिहान में मुबैना धांधलियों के मामले के सिलसिले में तमिलनाडु में 18 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दे रहा है। लियोनल मेसी फीफा आलमी कप की तारीख में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वो अर्जेंटीना नॉकआउट मरहले में सबसे आगे हैं। आज लंदन में FIH प्रो लीग हॉकी मुकाबले में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाजात तकसीम करने की तकरीब के दौरान पद्म अवार्ड्स 2026 अदा करेंगी। पद्म अवार्ड्स 3 जुमरों पद्म विभूषण पद्म भूषण और पद्मश्री में अता किए जाते हैं और मुल्क के आला तरीन शहरी एजाजात में शामिल हैं। आज मुनक़िद होने वाली इस तकरीब में सदर जमहूरिया 65वें पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस साल हुकूमत ने कुल 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री अवार्ड शामिल हैं। अवार्ड हासिल करने वालों में 19 खवातीन भी शामिल हैं, जबकि 16 अफराद को बाद अज मर्ग ये अवार्ड दिए गए हैं। टेनिस के सरकर्दा साबिक खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार मम्मूटी, फिल्मी गुलकारा अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा उन 56 शख्सियात में शामिल हैं जिन्हें सदर जमहूरिया आज पद्म अवार्ड से नवाजेंगी। इन अवार्ड्स की शुरुआत 1954 में की गई थी और हर साल यौम जमहूरिया के मौके पर इनका ऐलान किया जाता है। मस्कूरा अवार्ड्स गैर मामूली खिदमात के तरफ में तफवीज किए जाते हैं और आर्ट, सामाजिक काम, अवामी उमूर, साइंस, इंजीनियरिंग, तजारत और सनत, अद्वियात, अदब व तालीम, खेलकूद, सिविल सर्विस जैसे मुतअद्दिद शोबों में अता किए जाते हैं। आकाशवाणी न्यूज दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं रजी अहमद।
0: आकाशवाणी का खबरों का शोभा आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म की सीरीज के तहत खुसूसी प्रोग्राम नशर कर रहा है। इस सीरीज के तहत पद्म अवार्ड से याफ्ता शख्सियात की जिंदगी और खिदमात पर मबनी एक बसीरत अफरोज प्रोग्राम पेश किए जाएंगे।
2: नैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
0: नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत के दिन के मौके पर

0: नेफेड मुल्क में तकरीबन 74 लाख किसानों की मदद कर रहा है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली के अटल अक्षय ऊर्जा भवन में नेफेड ऑक्शन पोर्टल nefex.in के लॉन्च के मौके पर कही।
1: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी NCCF और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और NCCF ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे। सिर्फ कृषि उत्पादों की खरीदी तक नाफेड सीमित नहीं रहा है, विगत 3 साल में नाफेड ने बहुत अच्छा काम किया और इसके कारण नाफेड की प्रासंगिकता भी बढ़ी है और मुनाफा भी बढ़ा है।
0: जनाब शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत भी पेश किया। वजीर दाखिला ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तारीफ करते हुए कहा कि वो कौम परस्ती, सकाफती कौम परस्ती और भारतीय सकाफत के हामी थे। उन्होंने कहा कि दफा 370 की मनसूखी से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाले मफाहमत नामे का खैर मकदम किया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों की 16वीं मीटिंग से खिताब करते हुए कौमी सलामती के सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि इस मफाहमत नामे के नतीजे में दुनिया भर में तवानाई की सप्लाई मुस्तहकम होगी। उन्होंने आबनाए हुरमुज खोले जाने का भी खैर मकदम किया और कहा कि इससे सप्लाई में हायल रुकावटें दूर होंगी और कीमियावी अशिया और कीमियावी खाद जैसी चीजों की किल्लत पर काबू पाया जा सकेगा। जनाब डोभाल ने कहा कि खित्ते और खित्ते से बाहर जहाजरानी की ज्यादा पेशरफ से इक्तसादी खुशहाली को फरोग हासिल होगा। जनाब डोभाल ने मजीद कहा कि आज दुनिया अफरा तफरी के दौर से गुजर रही है, जहां फौजी तनाज़ियात, जोग्राफियाई, सियासी, गैर यकीनी इक्तसादी मसाइल और ऐसी टेक्नोलॉजी भी सामने आ रही है जो रुकावट डाल सकती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट असातिज़ा की भर्ती के इम्तिहानात के मामले में मुबैना धांधलियों के मामले के सिलसिले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 जगहों पर छापे मार रहा है। डायरेक्टोरेट का कहना है कि मरकजी क्राइम ब्रांच की जानिब से 2017 में दर्ज की गई FIR की बुनियाद पर यह कार्रवाई की जा रही है। उसने ये भी बताया कि पुलिस ने 2021 में इस मामले में फर्द जुर्म दाखिल की थी। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की रकम में खुदबुद के इल्जामात की छानबीन करने वाली खसूसी जांच टीम ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी इब्तदाई रिपोर्ट सौंप दी है। लखनऊ डिवीजन के कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने उमूर दाखिला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद को ये रिपोर्ट दी है। हुकाम का कहना है कि तफ्तीश अभी जारी है और मजीद हकाइक जमा किए जा रहे हैं। ज़राअत और किसानों की फलाह बहबूद के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने एलनिनो के मौसम और ज़राअत पर असरात के पेश नज़र आज नई दिल्ली में सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस मीटिंग में कई रियासतों के ज़राअत के वज़ीरों, सेक्रेटरीज, ज़िला कलेक्टरों और दीगर अहलकारों ने शिरकत की। भारतीय महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिन के दौरान असम, मेघालय, मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। इसके अलावा बिहार, अरुणाचल प्रदेश, साहिली कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा, तेलंगाना और केरला में भी तेज बारिश होने का इम्कान है। फीफा वर्ल्ड कप में आज सवेरे फिलाडेल्फिया स्टेडियम में ग्रुप आई के एक मैच में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया। इस तरह फ्रांस ने नॉकआउट मरहले में अपनी जगह बना ली है। एक दूसरे मैच में नॉर्वे ने आज न्यूयॉर्क स्टेडियम में ग्रुप आई के एक मैच में सेनेगल को 2-3 से हरा दिया। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने पहला गोल 38वें मिनट में किया जबकि दूसरा गोल मैच के आखिरी लम्हात में किया। इस तरह फीफा वर्ल्ड कप में मजमूई तौर पर 18 गोल कर चुके हैं और वो वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। मर्दों के FIH हॉकी प्रो लीग के इफ्तिताही मैच में आज भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ कप्तान से होगा। चीन के हुलनबियोक में मुनाकिदा एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024 के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ये पहला मुकाबला होगा। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में गैर फौजी एजाजात देने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि दफा 370 की मनसूखी से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल

0: نئی دلی میں برکس ملکوں کے قومی سلامتی کی مشیروں کی 16th میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے آب نائے ہرمز کھولے جانے کا خیر مقدم کیا ہے اور اسے سپلائی میں رکاوٹیں دور کرنے میں مدد ملے گی. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ اساتذہ بھرتی کے امتحان میں مبینہ دھاندلیوں کے معاملے کے سلسلے میں تمل ناڈو میں 18 جگہوں پر تلاش کی کارروائی انجام دے رہا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. President Draupadi Murmu to present Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Home Minister Amit Shah says Shyama Prasad Mukherjee's dream realized with abrogation of Article 370. National Security Advisor Ajit Doval says opening of Strait of Hormuz will strengthen energy security around the world. Enforcement Directorate conducts searches at 18 places in Tamil Nadu in connection with alleged teacher recruitment exam manipulation case. Lionel Messi becomes the highest goal scorer in FIFA World Cup history, leads Argentina into knockout stage. And in hockey, India to face Pakistan in opening match of the FIH Pro League in London today. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. The President will confer 65 Padma Awards today. More from our correspondent.
2: This year, the government has announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Among the awardees, 19 are women, while 16 individuals will be awarded posthumously. The Padma Awards, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, are among the highest civilian awards of the country. Tennis legend Vijay Amrit Raj, actor Mammootty, playback singer Alka Yagnik and cricketer Rohit Sharma are among 65 prominent personalities who will receive the Padma Awards from the President today. Instituted in 1954, these awards are announced on the occasion of the Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinction and is given for distinguished and exceptional achievements in various fields and disciplines, including art, literature, education, sports, medicine, social work, science and engineering, public affairs and trade and industry. Soumya Sharan, Akashwani News, Delhi.
1: Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have paid tribute to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his martyrdom day. In a social media post, the Vice President described Dr. Mukherjee as a visionary leader, renowned educationist and staunch patriot. In a social media post, Prime Minister Modi said, Dr. Mukherjee dedicated his life to the country's development. He said Dr. Shyama Prasad Mukherjee's unwavering conviction, courage in public life and commitment to national interest continue to inspire generations. Union Home Minister Amit Shah today said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee's vision had been realized with the abrogation of Article 370. Mr. Shah paid tribute to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his death anniversary, describing him as one of India's greatest leaders whose contributions helped preserve the country's unity and integrity. Addressing a gathering in New Delhi during the launch of NAFED's auction portal, Mr. Shah said June 23rd holds special significance for Bharatiya Janata Party workers as it marks the day Shyama Prasad Mukherjee sacrificed his life for national unity.
3: Shyama Prasad Mukherjee is one of the great leaders of this country who never did anything for fame in his life. And his party, Bharatiya Janasangh, is now known as Bharatiya Janata Party. He was a strong supporter of nationalism, cultural nationalism and Indian culture. And hundreds, lakhs and crores of political workers like me in these 60 years have tried to move the country forward.
1: On the occasion, Mr. Shah also said that the National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited, NAFED, is helping around 74 lakh farmers in the country. He launched NAFED's auction portal, nafix.in, in New Delhi.
3: In the next 2 years, the Ministry of Cooperation will ensure that not a single grain of pulses procured by NCCF and NAFED is sourced through traders. Instead, all procurement will be made directly from farmers, ensuring that the profits reach the farmers. We have built the infrastructure. NAFED is no longer limited to the purchase of agricultural products. NAFED has done a very good job in the past 3 years, and because of this, NAFED's popularity has increased and the profit has also increased.
1: India has welcomed the Memorandum of Understanding MOU reached between the United States and Iran. Addressing the 16th BRICS National Security Advisors meeting in New Delhi, National Security Advisor NSH Ajit Doval said the development will strengthen energy security around the world. He also welcomed the opening of the Strait of Hormuz and highlighted that it will help remove supply chain bottlenecks and address shortages of commodities such as fertilizers and chemicals.
4: India welcomes the MOU reached between the US and Iran. We have got cautious optimism and we hope that it will work. It will help energy security. Opening of the Strait of Hormuz is a very welcome development. It removes supply chain bottlenecks and many of the shortages in the field of, say, fertilizers and chemicals, etc., will be met with. And the freedom of navigation that will be available to the countries in the region and beyond probably will also greatly improve our economic prosperity.
1: Highlighting the emerging security concerns, the NSA said non-traditional threats have transcended national borders and developed capabilities that challenge conventional responses.
4: We need to be cognizant of the new security threats and challenges. Non-traditional threats have transcended national borders and have developed defeat systems against conventional responses. Innovative disruptive technologies, more camouflaged variants of terrorism, cyber threats in a world which is getting increasingly digitized, they all constitute an important threat for us.
1: India and the United States opened high-level trade talks today to salvage and recalibrate a proposed bilateral trade agreement after changes in U.S. tariff policy disrupted a framework negotiated earlier this year. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met United States Trade Representative Jamieson Greer and U.S. Ambassador to India Sergio Gore in New Delhi. Both sides are aiming to conclude an interim trade pact before the 24th of July, when Washington's temporary 10% tariff on imports from trading partners is set to expire. The discussions focused on revising a framework agreement announced in February. The original framework was based on tariff commitments that became uncertain after a U.S. Supreme Court ruling struck down sweeping tariffs announced by President Donald Trump. The Enforcement Directorate, ED, is conducting searches at 18 premises in Chennai, Tiruchirappalli, Coimbatore and Madurai in connection with the alleged teacher recruitment exam manipulation case. The ED said the action is based on an FIR registered by the Central Crime Branch in the year 2017. It added that police had filed a charge sheet in the case in 2021. Akashvani is broadcasting special programs as part of its series People's Padma on Akashvani.
5: Find the idea of a human milk bank, and I started then the first human milk bank in Asia.
6: Designed many equipment for measurement of materials like resistivity, thermoelectric power, which is a very sensitive property. All these things we developed it ourselves at a very, very low cost.
1: Through these episodes, listeners will get an insight into the lives and contributions of Padma awardees. The programs are being broadcast today on 100.1 Akashvani Gold. It can also be heard on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. So stay tuned to Akashvani. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. a three-member special investigation team, SIT, probing the alleged anomalies in donations and offerings at the Ayodhya Ram Mandir, has submitted its initial probe report today. The report was submitted to Additional Chief Secretary Home Sanjay Prasad by SIT Head Vijay Vishwas Pant, who is Commissioner of Lucknow. After submitting the report, SIT Head Vijay Vishwas Pant said, "This is a preliminary report. The high-level panel was constituted by the state government to investigate alleged financial irregularities and misappropriation of funds. The team has submitted its initial course of inquiry. Members of SIT questioned several suspects and temple trust officials over the past week. Further action based on the recommendations in the report is expected soon." The Uttar Pradesh government constituted the SIT on the 13th of this month following a request from the Temple Trust after allegations surfaced regarding the misappropriation of donations received at the Ayodhya Ram Temple. A joint team comprising experts from the Forensic Science Laboratory and members of the Special Investigation Team inspected the spot in Lucknow where a massive fire claimed the lives of 15 people yesterday. More from our correspondent.
7: After inspection of the area, ADG Lucknow Zone Praveen Kumar, who is also member of the SIT, said that the team will conduct a thorough investigation into all aspects and examine the responsibilities of every department in detail. On the other hand, the six-member Forensic Science Laboratory team collected evidences from the spot to determine the cause of the blaze and establish the sequence of events. Meanwhile, the Lucknow Development Authority has issued a demolition notice for the building. The three-story building was issued a demolition order in 2016 over unauthorized construction, but it was revoked less than 2 months later. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
1: The United States has announced a $230 million sustainment package for India's M777A2 ultra-light howitzers. In a social media post, U.S. Ambassador to India Sergio Gore said the defense partnership between India and the U.S. is continuously growing and the proposed sale is ready to be concluded. Monsoon has become active again in Maharashtra. Rain continues its spell in Mumbai and nearby suburbs for the third consecutive day today. More from our Mumbai correspondent.
8: Several parts of the island city of Mumbai and its suburbs continue to receive moderate showers since morning. IMD has informed that the southwest monsoon has further advanced into the remaining parts of Central Arabian Sea, some parts of Maharashtra, including Mumbai, and certain parts of central and eastern India. Citizens are also advised to remain alert as there is a strong possibility of moderate to heavy rainfall in some areas of Mumbai city, Mumbai suburbs, and the Ghat regions of Pune, Raigad, and Ratnagiri over the next few hours. Sangeeta Godbole, Akashwani News, Mumbai.
1: The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal today. Heavy rainfall is also expected over coastal Karnataka, Konkan, Goa, Odisha and Telangana till tomorrow. The Met Department predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh and Uttarakhand for the day. According to the weather agency, heat wave conditions are expected over Chhattisgarh, eastern parts of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh today, while severe heat wave and warm night conditions are expected over Vidarbh till tomorrow. IMD said a gradual rise in maximum temperatures by 2 to 3 degrees Celsius is expected over northwest India during the next 3 days. In FIFA World Cup, Argentina star captain Lionel Messi has created history after he scored 18 goals, surpassing Germany's Miroslav Klose's record of 16 goals to become the highest goal scorer in World Cup history. In a super clash, Argentina defeated Austria 2-0 in their Group J match in Arlington, United States last night to secure a place in the round of 32. With this win, Argentina has entered the knockout stage. Meanwhile, Algeria thrashed debutants Jordan 2-1 in a Group J encounter in Santa Clara, USA today. In hockey, the Indian men's hockey team will take on arch rivals Pakistan in the opening match of the FIH Pro League today. This will be the first encounter between India and Pakistan since their Asian Champions Trophy clash in Ulaanbaatar, China in 2024, where India emerged victorious with a 2-1 win. Benchmark domestic equity indices were trading nearly 1% lower in the afternoon session today. The Sensex plunged 653 points to 76,441, while the Nifty lost 220 points to 23,883 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Home Minister Amit Shah says Shyama Prasad Mukherjee's dream realized with abrogation of Article 370. National Security Advisor Ajit Doval says opening of Strait of Hormuz will strengthen energy security around the world. Enforcement Directorate conducts searches at 18 places in Tamil Nadu in connection with alleged teacher recruitment exam manipulation case. Lionel Messi becomes the highest goal scorer in FIFA World Cup history and leads Argentina into knockout stage. And in hockey, India to face Pakistan in opening match of FIH Pro League in London today. With that, we end the midday news.
9: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा हुर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेस्सी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में एफआईएच हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान दो पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
10: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
9: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी, पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
11: मैं रैप का काम सीखा, अंगूली का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है। तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
12: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी दस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
9: ये कार्यक्रम आज एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉ मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
13: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
9: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
13: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
9: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
13: आने वाले दो सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है, और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
9: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा ये संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
13: नाफेड ने एक प्रकार से नाफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत की, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
9: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
14: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
15: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं, और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
9: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रिर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
9: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार 3rd दिन भी बारिश हो रही है।
16: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
9: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
17: Medium wave kilohertz chikson apchunga sumyana meters ngibge gechu kebji tans chuzurku yang FM gadan chikton chuzur chike kanga je akashvani leni junjik tan ngime chuzut ngistan pe charu kasata chuzut ngistan skar mangam chunga hatsak ba la dorse lurik sanazat inasgula stanzin paljore salkane elubo sanazat

0: Us jun jik kong gyal kabi gosh kong stachkan guni nang ne chik inok molin chik izuk mola jaanj.
1: राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ और मूठ जैसे एक सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है. कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे. ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे.
0: नुब्रा डिगरेना स्कूजब टशिगेल्सन देपोने कोसिका जुग से योदेरिंग्सला डिगर गम्यूलेना यार्गेसी लास्मांग पोजिक डुबखान गुना गोजिन जाते देपोन जुर्बा टशिगेल्सन स्टेट ठीपा टशिगेल्सन खाचुतांग स्टेथुस गुनला डिगर गम्यूल पाकुने थुक्षे छे जुआ जाते नौक. Shilun Narendra Modi gyagar shukshan tang yampo yargas chan itchis chane gyunure toga tang itchis chan gyalchi ildane ka shukshan gyalkabe na gyushche sipiya gyalkab tangpe ka tapslam laklane na kyon jikta ano gyalchan New Delhi na asgeri sarpil tsokspa jiki daldik zate yotkane na nga tsokspa sungshat zaten jikta shilun itchis trangyams tang gyalchi ildane ka gyali toga gya chinmil dane ka skone loos chutak chikne pala yargas chin jikta enok molto koin G7 tsokspe na nga gyagare kage tos tuga zaten jik gyalchi ildane goshkongu ni gyalkab tangpe ka borchesi laskak tangpe ka borchesi na nga gyagare kakun shada zate enok zhunge lo chugni se लासिर गुने ठोस थुग जादेन जिक तांग छेलो ने स्वच्छ भारत मेक इन इंडिया खादी तांग नासे चला कुनला यार के तांग छे से थोगा लास गुलबो गेल खप जंग छे से नंगा थुमी गुने खक इन खान बो थांसपो लुसिन जिक तांग एनो कोमल तो शेजिन द्रौपदी मुर्मी दिरिंगेल सा न्यू दिल्ली नंगा Shedzin hii shukdang sika gyal kabe jingstaks cheshus Padma jingstaks nistong nishus zarugi kak nispi nanga Shedzin hii Padma jingstaks tukchur ranga Gautua Padma Vibhushan nistang Padma Bhushan aldun Tang Padma Shri ngabchu ngaruk thede inok Denis hii Salpa Mingchan Viji Amritri Loknyan Thapkan Memotri Lu Salkan Alka Yaknik tang Kikede Salpa Rohit Sharma Gunla Shijini Chasne Padma Jingstaks Namskan Gunitone Nok Mangjung Gastone Skapsla Jung Engistong Nishu Tsarukpo Padma Jingstaks Gyadang Sumchu Sukshigi Kaptaks Jate Inpin Inanga Padma Vibhushan Shnga Tete Nok Yang Ladaksne Dr. Padma Gurmedla Padma Shri Jingstaks Salte Nok Gyalkhapil dane shungshkub lapston pa ajidoa le dang brikse gyalkhapil dane lapston pa gune tsokspe ringsla soswa gyanage chilon wang yi tang nyampo gyalkhap nise pare sungdos zate enok. Sungdos eskapsla gyalkhap niske pare dildux eldemo borche se toga yargas tang rokshtele toga sungdos zat kanbo tangspo luste enok. Kasata Kaptakshik Sanaza Dodashin Gendali Nasulzde Kagapiyar Zong Tsangma Li Gargil Nubra Jangtang Sham Dras Tang Zanskar Gune Stingare Fiyak Nyanju Linjasin Ok Restos Pagun TV Nasul Kavrech Na Tongom Shan Videography Cinematography Nangar Salchan Nasul Kyonches Tang Tang Chese Toga Tongom Shan Rang Laga HD 4K video camera, 4G, 5G connectivity chane smartphone tang rang laga motor kolo yotkan gunla na skat salchesen o restos pagun nyanju gun rang rang zong ne skangos teno nyanju pulche se sting ju ge chestang julai ches churuk porte teno sip saldo dashin gander lene thukyus chat nyanchesen o Akashwani legute la darsena sungimina lanji Sanchez la pulinjik tangyon teyang ina sulgun si tsokstarki platform sosugut tang Sanchez la pulinjik tangyot Akashwani lene ta anna sultonu.

0: kuzuk siyoteno, dering rgazto ne kuzuk standali zat kwe iskap sarsojungi zaptung laska galhon po jion ba, nimu pen jayanti bai bambani askundron stresu la tu zazateno, itus ujung azdir shishkyong jion ba VK Saxena, ranskyong sospes depon zur ba tashi galsan, skepji palga rinpoche chok tang chos tang shidi goskyong mangpoche ke tu zazateno. Sojungi sonam laska galhon po Shivraj Singh Chauhan is gelkak susananga churko nirkalas kun selchila jungi chosne tablam snatsok shike pinjik tang yotanok molto skujabs Shivraj Singh Chauhan is yuli sonam pa gunla namli phogyur tang stunte stontok badget nzachisi chirka guninanga gyurja khyongchila labja salenjik ibo mulajaj
1: सभी राज्यों को आग्रह किया है कि जो उपलब्ध जल है उसका कैसे बेहतर उपयोग किया जाए, तालाब हो, जलाशय हो, नाले हो, खेत तालाब हो, चेक डैम हो, स्टॉप डैम हो, बोरी बंधान हो, मनरेगा जो अभी तक चल रही है, इसके बाद विकसित भारत जी राम जी चलेगा, उसमें भी निर्देश दिए गए कि इनको ठीक करके रखे ताकि कम वर्षा भी हो तो पानी को हम संग्रहित कर सके और उस पानी का बेहतर उपयोग कर सके। रणनीति पहुंचे फसल की रणनीति जो कम अवधि वाली फसलें चिन्हित की है, ऐसी फसलें जो जलवायु अनुकूल भी हो और डाइवर्सिफिकेशन भी हम करें, इनमें फसल विविधीकरण के कारण एक फसल पर निर्भरता कम हो जाए, इंटरक्रॉपिंग और एक साथ बाकी फसल लगाएं तो कोई ना कोई फसल ठीक से आ जाए। दलहन मोटा अनाज और तिलहन ऐसी फसलें हैं जो कम पानी में भी ठीक से हो सकती है, तो उसकी सलाह भी राज्यों को दी गई है और राज्यों से ये भी कहा कि अगर सामान्य बुआई से बारिश का अंतर बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर वैकल्पिक फसलें कौन कौन सी हो सकती है, क्योंकि हम खेत खाली नहीं रहने देंगे किसान के, इतना पानी तो गिरेगा कि कोई ना कोई फसल हो जाए।
0: Ladakh Ujung Azde Thorim Yontan Laskhak Tang Entrepreneurship Development Institute of India Ngiskwe Zungde La Dang Neparla Ranskyong Tsospe Tsoskan Nanga TOT Yanga Training of Trainers Juntang Tsongde Yanlak Pechesi Thap Soseskor La Jaksumi Jongdar Salinjik Tanok Jongdari Guzuk Standele Zadgwe Skaps Ladakh Ujung Azde Thorim Yontan Laskhak Tang Salyergyas Laskhak Etungshi Banu Parbas Kundun Sotang Nabari Assistant General Manager Sevang Dorje Siwes Kundun Petsula Tuzazatenok Ladakh Ranskyong Tsospa Lays Depon Zur Bata Shigalsan Ujuk Sinanga BGP is de Utit Zatkan Ranskyong Tsospa Truk Ringsla Nubre Tigar Gamil Digar Gamilinanga Yergyas Si Lasir Mangpo Jik Dubjes Peka Tatpong Chungin Jik Gamil Pagunis is Depon Zur Batang BGP T Bata Shigalsan Kachugun Larsiva Pulches Edigrim Jik Tarik Zatanok Zatguez Cups Geshes Konchok Nam Traktang Gamil Goba Ngamang Tharchin Sospe Gamil Pagunis Digar Gamilinanga Sarjang Yergyas Tang Mimang Sir Kalas Tonsak Unselches Toka Goskyong Niskwe Rosdel Tarkil Zaches Patur Jeche Yodatanok Thailand Nes Kyotkan Gedun Guni is Dejigis in Alzit says Nishur Sakshin Parla, Lamayuri, Yundung Tarpaling Gonpani, Pyang Gonpa Sukpar, Tunjak Chigi, Jive Komdul Zadin Jiktang, during Jak Sumpe Jaga, Timos Gang, Serskarma Gonpani, Gozuk Zate, Ang Rigute, Himishupachan Gamila, Leva Zatenok, Jagung Dharmas Foundation is Choks Natalik Zatkan, E. Jive Komdul Ringsla, Nasa Soseka, Gedun Pagunla, Pepsus, Yuazatenok. Leilontin kan gyute ladakh sin hatul gun hato go chusot or gu ngime chusot ngis tangskar mar khap chunga ma pito go chusot khata pito go chusot or dun tangskar ma chang gun ka sanchis la pulin jiktanok mimangs kunis ladakh sin hatul gun facebook youtube tang x kunikang air news leir gyute ang san thupche jotenok akash fani leni tar hatul ton

0: हेलो जुले,
1: हेलो जुले जी नदे
0: हेलो जुले डिग्री नाइन का साहब
1: ऐसा जुले ना जुले चांदा जु
0: या दर्जे संग गाने जुक से ले
1: मैं जैसा तो मैं नहीं जुले
0: तू कम संग बोझ जुक से ले
1: ऐसा जु
0: या तनेर गया सासो मग चीज ना सुधर दूँ कौन ले
1: ये योले ताजी ताजं मिलु पाया ले ताजी चीज तंग दूँगे ले या
0: दांग दिन या ची छाला शिद जाते न्यू दोंग ले
1: राजिंग चीज़ दिक मैंने चार मिनट पहले बात
0: या दर्जे संग ले कजुक लू चिक सांसी ना गोंग ले
1: टोपा क्या चीज़ दर्जे चलां चु
0: लू संकानी टोपा जुक से दोंग ले
1: यो ले नज़र हमें दिच्छन समो यो दिंग मरा यो दिने थाव जी यो
0: या तने नज़े डिग्री में ना थुसा जच्चे लक्ष्मी तक पाना थुजे छे तने स्टिंग मा नज़े डिग्री में ना खाक तू संजुग लो दर्जे संग ले तने इंग्लिश ना आज चकानी तने नज़े लू चिक संचेज ला पुले ने ले
1: जी लो जी

जय हिंद फौज भाइयों, स्वागत है आप सभी का इस फिल्म गीतों के कार्यक्रम में। आइए सबसे पहले सुनते हैं आशिकी फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत से संवारा है नदीम श्रवण ने।

अभी आप सुन रहे थे मोहरा फिल्म का गीत कुमार सानू की आवाज़ में। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे वीजू शाह। आइए अगला गीत हम सुनते हैं जो जीता वही सिकंदर फिल्म से, उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ों में। मजरू के लिखे हुए इस गीत को संगीत दिया है जतिन ललित ने।

अभी आप सुन रहे थे साजन फिल्म का गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में। गीतकार थे समीर और संगीतकार थे नदीम श्रवण। फौजी भाइयों के इस कार्यक्रम में अगला गीत हम सुनते हैं हम दिल दे चुके सनम फिल्म से, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। महबूब के लिखे हुए इस गीत को संगीत दिया है इस्माइल दरबार ने।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवो भव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
2: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
3: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज, वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन, गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
4: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
4: ब्रिक्स NSA की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे NSA की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
4: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
0: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफ़ी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेग बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात $1.84 trillion तक पहुँच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों और बढ़ना चाहिए।
5: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने

0: माधवन और गुलूकारा अलका याग्निक पद्म अवार्ड हासिल करने वालों में शामिल हैं। हुकूमत ने कहा है कि वो एनिनो की वजह से कमजोर मॉनसून के असरात के इम्कान से निपटने के लिए किसानों की मदद की खातिर पेश की तैयारियां कर रही है। इम्तिहानात के इनका से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए ने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान के नतज का ऐलान कर दिया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और मगरब उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लंदन में एफआईएच प्रो लीग हॉकी के इफ्तिताही मुकाबले में भारत की मर्दों की हॉकी टीम ने रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 3-4 से हरा दिया है। और फीफा आलमी कप में हॉस्टन में पुर्तगाल का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होने वाला है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि बदलते हुए आलमी मंजरनामे में सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक को मुस्तहकम करने और दहशतगर्दी और साइबर सिक्योरिटी से लेकर उभरती हुई टेक्नोलॉजी से लाहक मुश्तरका चैलेंजों के इजाले की खातिर ब्रिक्स का इंतहाई अहम रोल है। वजीर आजम मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों और सिक्योरिटी के सीनियर अहदेदारान से मुलाकात की। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने इस बात को भी उजागर किया कि भारत की ब्रिक्स की सदारत में हकीकी इश्तराक में पेशरफ्त, आलमी खित्ते जनूब की तरजीहात की हिमायत और एक महफूज और ज्यादा शमूलियत वाली दुनिया के सिलसिले में इश्तराक को अहमियत दी जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव पर जोर दिया है और अफसरान से जोर देकर कहा है कि वो शहरियों को हुक्मरानी में मरकजी अहमियत दें। आज नई दिल्ली में 2024 बैच के आईएएस के उन 183 तरबियती अफसरान से बातचीत करते हुए जिन्हें मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में बतौर असिस्टेंट सेक्रेटरी मुंसलिक किया गया है, जनाब मोदी ने नौजवान सिविल सर्वेंट से जोर देकर कहा कि वो विकसित भारत @2047 की जानिब भारत के सफर की क्यादत करें। वजीर आजम ने मुल्क की तामीर में खवातीन के बढ़ते हुए रोल को ये कहते हुए उजागर किया कि मौजूदा बैच में 40% से ज्यादा खवातीन अफसर हैं। जनाब मोदी ने नौजवान अफसरों से कहा कि वो मुसलसल मुल्क की तामीर में अपने ताउन का जायजा लेते रहें और अपने ओहदों के बजाय अपनी कारकर्दगी से हासिल होने वाले नतायज से इत्मीनान महसूस करें। उन्होंने इस बात पर एतमाद का इजहार किया कि उनकी तवानाई, सलाहियत और खुद को वक्फ करने का जज्बा भारत को तरक्की की नई बुलंदियों तक ले जाने में एक अहम रोल अदा करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में शहरी एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता किए। मुल्क के आला तरीन शहरी एजाजात में से एक पद्म अवार्ड्स 3 जुमरों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के तहत दिए जाते हैं। सहाफी पी नारायणन को अदब तालीम के जुमरे में पद्म विभूषण से नवाजा गया है, जबकि साबिक जज केटी थॉमस को सामाजिक काम के लिए पद्म विभूषण से सरफराज किया गया है। पेश एक रिपोर्ट।
1: इस साल हुकूमत ने कुल 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड्स शामिल हैं। साबिक टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूथी और प्लेबैक्स गुलूकारा अलका याग्निक समेत 7 लोगों को पद्म भूषण से नवाजा गया है। सियासतदान शिबु सोरेन को बादजमर्ग पद्म भूषण दिया गया है। 57 अफराद को पद्मश्री अवार्ड से सरफराज किया गया है, जिनमें क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा, अदाकार आर माधवन और प्रसार भारती के साबिक सीईओ शशि शेखर वेम्पति शामिल हैं। अदाकार सतीश शाह को बादजमर्ग पद्मश्री से सरफराज किया गया है। इस मौके पर नायब सदर सीपी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के अलावा दीगर सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा है कि हुकूमत एनिनो की वजह से कमजोर मॉनसून के इम्कान असरात से निपटने की खातिर किसानों की मदद के लिए पेशगी तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि मुल्क में अब तक 43% कम बारिश हुई है और जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने का इम्कान है।
2: एलनिनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है 2 जुलाई तक के सप्ताह में कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। हम जो प्रभावित जिले कितने हो सकते हैं उसका आकलन भी किया गया है और अब तक जो संभावना है 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
0: जनाब चौहान ने कहा कि रियासतों को दालों और मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को फरोग देने का मशवरा है जिनमें कम पानी की जरूरत होती है और सख्त मौसम में भी उनकी अच्छी पैदावार हो सकती है। उन्होंने कहा कि रियासतों के साथ तालमेल में साइंसी तरीक़ेकार फसलों की बरवक्त मनसूबाबंदी और जिला सतह की तैयारी को मुस्तहकम किया जा रहा है। नीति आयोग के नायब चेयरपर्सन डॉक्टर अशोक लाहिरी ने आज कहा कि पिछली सिमाही के दौरान भारत की मजमूई तजारत में 5.4% का इजाफा हुआ। डॉक्टर लाहिरी ने यह बात नई दिल्ली में तजारत पर नजर रखने वाली सिमाही रिपोर्ट का ताजा एडिशन जारी करते हुए कही। नायब चेयरपर्सन ने मजीद कहा कि पिछली सिमाही के दौरान भारत की बरामदात 1.84 अरब डॉलर तक पहुंच गई जबकि दरामदात में 6.5% का इजाफा दर्ज किया गया। मगरबी एशिया की सूरतहाल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह बहरान आर्जी था। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दुनिया में जल्द ही अमन कायम होगा। आज जारी करदा रिपोर्ट में बुनियादी तौर पर अद्वियात की तजारत पर जोर देते हुए आलमी तजारत में भारत के रोल का तजिया पेश किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इम्तिहानात मुनक़िद करने वाली कौमी एजेंसी NTA ने आज अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान CUET 2026 के नतायज का ऐलान कर दिया है। इम्तिहान में शामिल हुए उम्मीदवार अब सरकारी CUET पोर्टल के जरिए अपने स्कोर कार्ड्स तक रसाई हासिल कर सकते हैं। NTA के मुताबिक इस साल इस इम्तिहान में 11 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट ने आज 1993 के कोलकाता बाव बाजार बम धमाका केस में उम्र कैद के एक मुजरिम की कबल अज वक्त रिहाई के बारे में दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगा दी। जस्टिस पी के मिश्रा और जस्टिस संजीव सचदेवा पर मुश्तमिल बेंच ने मगरबी बंगाल हुकूमत की उस दरखास्त पर उबूरी राहत दी जिसमें हाई कोर्ट के 5 जून के उस हुक्म को चैलेंज किया गया था जिसके तहत 77 साल मुजरिम मोहम्मद राशिद खान की फौरी रहाई का हुक्म दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद राशिद खान को भी नोटिस जारी किया। रियासत की जानिब से पेश होते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने दलील दी कि हाई कोर्ट ने इस मामले में इस्लाही नजरिए का गलत इतलाक किया क्योंकि इस धमाके में 70 से ज्यादा अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए थे। मोहम्मद राशिद खान के वकील MR शमशाद ने कहा कि उनके मुवक्किल 33 साल से ज्यादा अरसा जेल में गुजार चुके हैं और एक शरीक मुलजिम को 2014 में इस सिलसिले में रियायत दी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुशाहदा किया कि खान का रोल मुख्तलिफ था और उन्हें धमाकों का मास्टरमाइंड करार दिया। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने आज मंगोलिया के वजीर खारजा बैतमुख और सनत और कानकनी के वजीर के साथ मंगोल रिफाइनरी प्रोजेक्ट के जेर तामीर मकाम का दौरा किया। सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया दोस्ती के तहत जारी प्रोजेक्ट में नुमाया पेशरफ्त हो रही है। उन्होंने इन मंसूबों में शामिल मुख्तलिफ टीमों के साथ जारी काम की ताजा सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर खारजा ने प्रोजेक्ट के मकाम पर भारत और मंगोलिया के वर्करों के साथ बातचीत की। उन्होंने इन मुश्किल हालात में इस तरह के अहम प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचाने में उनकी मेहनत लगन और अज्म को सराहा। वजारत खारजा ने आज कतर में होने वाले एक धमाके में 12 भारतीय शहरियों के हलाक होने की तस्दीक की। नई दिल्ली में नामनिगारों से गुफ्तगू करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि इस हादसे में 66 अफराद जख्मी भी हुए जिनका इलाज अभी चल रहा है। जनाब जायसवाल ने मजीद कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमत नामे पर दस्तखत होने के बाद अब तक भारत से वाबस्ता 11 बहरी जहाज आबनाए हुरमुस से गुजर चुके हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बाकी भारतीय परचमबरदार जहाज भी जल्द ही इस रास्ते से गुजरेंगे। पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर से मुतालिक बयान पर अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए तर्जुमान ने कहा कि ऐसे बयानात पाकिस्तान की अपनी नाकामियों और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की एक लायानी कोशिश है। उन्होंने कहा कि भारत इन मनगढ़ंत दावों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है और इन दावों को बिल्कुल ही अहमियत नहीं देता है। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने आने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के एक हिस्से के तौर पर जम्मू में अमरनाथ बेस कैंप में एक जामे मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। इस मशक के दौरान नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने मुश्तरका तौर पर बेस कैंप के पूरे अहाते में तलाशी और इलाके को महफूज बनाने की कार्रवाई अंजाम दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान ने अपने न्यूक्लियाई बुनियादी ढांचे की तवील मुद्दती और जामे निगरानी पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इसके साथ ही अमरीका अब नाए हुरमुज में पहरी जहाजों की आमदोरफ्त पर आयत पाबंदियों में नरमी करेगा और माली रियायतें फराहम करेगा, ताहम ये सब सख्त अमरीकी निगरानी के तहत होगा। सोशल मीडिया पर जारी एक तफसीली बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की क़यादत ने जारी सिफारती मुज़ाकरात में अहम रियायतें दी हैं, जिनका मकसद मगरबी एशिया में तवील कशीदगी के बाद एक जामे अमन फ्रेमवर्क कायम करना है। ताहम व्हाइट हाउस के इस बयान पर ईरान की हुकूमत ने फौरी एतराज़ किया और न्यूक्लियर निगरानी के दायरेकार के बारे में इख्तिलाफ जाहिर किया। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने वाज़ह किया कि ईरान ने मखसूस न्यूक्लियाई तनसीबात पर बैन अल-अक़वामी एटमी तवाना एजेंसी की निगरानी कबूल नहीं की। भारतीय महकमे मौसमियात ने कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और मगरबी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंचने का इम्कान है। दिल्ली एनसीआर में मौसम में अचानक शदीद तब्दीली देखी गई, क्योंकि खित्ते में तेज बारिश, धूल भरी आंधी और तेज हवाएं चल रही थीं। आईएमडी के मुताबिक कौमी राजधानी में कम से कम दर्जे हरारत 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 38.4 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। दूसरी जानिब आईएमडी ने कहा कि 2 से 3 दिनों के दौरान बिहार, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ खित्ते में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। लंदन में एफआईएच प्रो लीग हॉकी के इफ्तिताही मैच में मर्दों की भारतीय हॉकी टीम ने रिवायती हरी पाकिस्तान को 3-4 गोल से हरा दिया। भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला ये मुकाबला इस टूर्नामेंट के सबसे अहम मुकाबलों में से एक था। लंदन मरहले के दौरान भारत जुमेरात को इंग्लैंड का सामना करेगा और 26 जून को एक बार फिर पाकिस्तान से खेलेगा। इसके बाद 28 जून को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे मुकाबले के साथ अपना दौरा मुकम्मल करेगा। आज फीफा आलमी कप में ग्रुप मरहले के तहत मुख्तलिफ अहम मुकाबले खेले जाएंगे। ग्रुप के में हाउस्टन में रात 10:30 पुर्तगाल का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा। वहीं ग्रुप एल के तहत देर रात 1:30 बोस्टन में इंग्लैंड और घाना आमने सामने होंगे। बाद में सुबह सवेरे 4:30 टोरंटो में क्रोएशिया का मुकाबला पनामा से होगा। जर्मनी के शहर सूल में जारी आईएसएसएफ जूनियर आलमी चैंपियनशिप में भारत के लिए आज का दिन भी शानदार रहा और उसने मजीद 3 तमगे हासिल किए, जिनमें चांदी के 2 और कांसे का 1 तमगा शामिल है। शिवा नरवान ने मर्दों के 10 मीटर एयर पिस्टल जूनियर मुकाबले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए चांदी का तमगा जीता, जबकि युग प्रताप सिंह राठौड़ ने भी इसी मुकाबले में कांसे का तमगा जीता। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम ने मोदी ने कहा है कि सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक को मुस्तहकम करने और दहशतगर्दी और साइबर सिक्योरिटी जैसे चैलेंजों से निपटने में ब्रिक्स का अहम रोल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने शहरी एजाज से मुतालिक दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता किए। सहाफी पी नारायणन, टेनिस के सरकर्दा खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूती और आर माधवन और गुलूकारा अलका याग्निक पद्म अवार्ड हासिल करने वालों में शामिल हैं। हुकूमत ने कहा है कि वो एल नीनो की वजह से कमजोर मॉनसून के असरात के इम्कान से निमटने के लिए किसानों की मदद की खातिर पेश की तैयारियां कर रही है। इम्तिहानात की निकास से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए ने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान के नतायज का ऐलान कर दिया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और मगरबी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।
3: ngaje akashvani lene shunjik tan chani chi zot urgu dangs kar masum chu charu kasata chi zot urchu chukpa tundup tsiring tang to bonasal kane junglo rek sanazat